नमस्कार, सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 की वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 31 सेकेंड्स हुए हैं। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: चार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद 3रे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है औषधीय पौधों की खेती, संकलन एवं वाचन सुनीता अग्रवाल का।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे औषधीय पौधे की खेती और उनसे होने वाले लाभ पर। हमारे देश के अधिकांश किसान पारंपरिक फसलों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अपने खेतों में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सरसों, मूंगफली इत्यादि की बुआई करते हैं। जबकि औषधीय फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौन, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा वज, शिलेबन ग्रास, अकरकरा, सहजन इत्यादि प्रमुख है। इनकी खेती पर उतने ध्यान नहीं देते। श्रोताओं, यहाँ पर हम बता दें कि परंपरागत फसलों की खेती की तुलना में औषधीय पौधों की खेती से एक हेक्टेयर में किसानों को ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है। खेतों में कई सालों तक एक ही तरह की फसल उगाने से पैदावार क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में खेत में फसल विविधता के लिए औषधीय खेती करने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से दी जाती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खेत को एक ही तरह की फसल लेने से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। ऐसे में किसानों को फसल विविधता के लिए सलाह दी जाती है। फसल विविधता के इस क्रम में यदि गेहूं और धान की खेती को खाली होने के बाद यदि किसान उसमें औषधीय पौधों की खेती करेंगे तो यह उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगली बार जब वे उसमें धान और गेहूं उगाएंगे तो उनकी पैदावार पहले की अपेक्षा अधिक होगी। देश दुनिया में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान परंपरागत खेती के अलावा औषधीय और जड़ी बूटियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाला समय हर्बल उत्पादों का ही होगा। सरकार की तरफ से भी पारंपरिक फसलों की जगह अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें आयुर्वेद में दवा बनाने में होने वाले प्रयोग औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और किसान की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से सरकार देश में औषधीय पौधों की खेती पर जोर दे रही है। इसके लिए कई अभियान की भी शुरुआत की गई है। आमजन एवं किसानों को औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस कड़ी में पौधे लगाने के लिए बीते दिनों औषधीय पौधों को भी वितरित किया जा रहा है, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहित देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत देश भर में अगले एक वर्ष में 75,000 हेक्टेयर रकबे में जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी और औषधीय पौधों की खेती से किसानों को कई प्रकार से लाभ होते हैं, जैसे कि औषधीय पौधों की खेती में लागत अन्य फसलों की तुलना में कम आती है। औषधीय खेती में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का खतरा कम हो जाता है। नीलगाय इन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जड़ी बूटियों की खेती किसानों को आय का बड़ा स्रोत बन सकता है। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर देश को आत्मनिर्भर तो बनाया ही जा सकता है, साथ ही इसके निर्यात कर भी देश की आय में वृद्धि हो सकती है। भारत औषधीय पौधे का कच्चा उत्पादन 60-70% तक निर्यात करता है और इसका बाजार $120 मिलियन तक का है। इसका बड़ा बाजार तथा अधिक मूल्य के कारण किसानों को इसकी खेती के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित किया जाता है और लाभदायक भी साबित हुआ है। कुछ औषधीय पौधे महंगे होने की वजह से सभी किसान इसकी खेती नहीं कर पाते। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किसान सब्सिडी पर औषधीय पौधों की खेती कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और राष्ट्रीय औषधीय मिशन के तहत आती है। किसानों को इसका लाभ अधिक से अधिक जरूर उठाना चाहिए। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में औषधीय पौधों की खेती के बारे में आपको बता रही थी सुनीता अग्रवाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधू की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है अति सर्वत बर्जते, आलेख एवं वाचन निर्मला तिवारी का।

विद्वान जनों ने सब कामों में अति का विरोध किया है, उसे गलत ठहराया है। भगवान बुद्ध ने मध्यम भाग यानी मध्यम वर्ग का आचरण करने के लिए सर्व साधारण को उपदेश दिया है। बहुत तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं और बहुत धीरे चलने वाले अविष्ट लक्ष्य तक पहुँचने से पहले पिछड़ जाते हैं। जो मध्यम गति से चलते हैं वह बिना थके बिना पिछड़े उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। हाथी जब किसी नदी को पार करता है तो अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से रखता है, आगे की जमीन को टटोल कर उस पर एक पैर जमाता है। जब वह देख लेता है कि कोई खतरा नहीं है तो उस पर बोझ रख कर पिछले पैरों को हटाता है। इस गतिविधि से वह उस भारी काम को पूर्ण कर लेता है। यदि वह जल्दबाजी करे तो गहरे पानी में डूब सकता है, किसी दलदल में फंस सकता है या किसी गड्ढे में औंधे मुंह गिरकर प्राण गंवा सकता है। साथ ही यदि वह कदम बढ़ाने का साहस ही ना करे, पानी की विस्तृत धारा को देखकर डर जाए और नदी पार ही ना करे तो फिर वह कभी नदी पार नहीं कर सकता है। हाथी बुद्धिमान प्राणी है, वह अपने शरीर के भारी भरकम डेढ़ डोल का ध्यान रखता है। नदी पार करने की आवश्यकता के अनुभव पर वह पानी के फैलाव को समझता है और पार करते समय आने वाले खतरों को भी समझता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वह अपना कार्य गंभीरतापूर्वक पूर्ण कर लेता है और जैसे ही उसे खतरा दिखता है वह अपना पैर पीछे हटा लेता है और फिर दूसरी जगह से रास्ता तलाश लेता है। मनुष्य को भी हाथी की सी ही बुद्धिमानी सीखनी चाहिए, अपने कार्यों में मध्यम गति से ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी कितने ही उतावलेपन करें लेकिन एक दो महीने में अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, यदि कर भी लें तो जल्दी भूल जाएंगे। क्रम क्रम से नियत काल में पूरी की हुई शिक्षा ही मस्तिष्क में सुस्थिर रहती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी वृक्ष ये सभी अपने नियत अवधि में ही परिपक्व होते हैं, फल देने लायक होते हैं और नियत समय पर ही वृद्ध होते हैं। यदि उस नियत गतिविधि में जल्दबाजी की जाए तो परिणाम बुरा होता है। हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता मनोभूमि परिस्थिति इन सभी बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। बहुत अधिक खाना यह भी सही नहीं है और बिल्कुल ना खाना यह भी सही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अति बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज की अति बुरा ही है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर काम करना चाहिए। यही हमारे संतजन कहते हैं, हमारे बड़े जन कहते हैं और शास्त्रों में भी यही बात बताई गई है। कहीं ऐसी छलांग ना लगा दी जाए कि गिरकर अपने ही पैर तोड़ लिए जाएं। उतावलेपन में काम बिगड़ जाता है, इसलिए धैर्यपूर्ण सही समय का इंतजार करते हुए कार्य करना चाहिए और अति से बचना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में अति सर्वत वर्जते, आलेख एवं वाचन निर्मला तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको तृप्ति शाक्या के गाए चंद भक्ति गीत सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे तृप्ति शाक्या से भक्ति गीत। कार्यक्रम था आराधना। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है अस्थमा कारण एवं उपचार। इस विषय में आपको बताएंगी डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय रांची से।
1: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे कोविड के बाद, उनके अस्थमा

0: मां के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
0: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं ना थी।
1: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
0: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
1: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
0: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है, कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
1: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
0: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूँगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
1: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेनी पड़ेगी। तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
0: मैं आकाशवाणी के माध्यम से

0: बताना चाहता हूं कि इन्हेलर से डरे नहीं, इन्हेलर केवल एक दवा पहुंचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है। तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदि होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपकी इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए, और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आज कल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
0: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2-3-4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है। तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है, कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है। तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
1: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
0: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पर भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पर भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए, यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज के दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे अस्थमा कारण एवं निदान, इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र।

0: प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चन्द शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्रीमोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमन्त्री श्रीमोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्रीमोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

8:45 पर समय होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन का। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी की और संयोजन श्री एस के लाल की। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार 1:05 पर होगा, अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से 1:10 पर, प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से 1:20 पर, विविध भारती के कार्यक्रम गीतमाला आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से 2:30 पर, विविध भारती के कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 2:55 पर, प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से 3 बजे, विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 4 बजे, प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से 4:02 पर, सेहतनामा विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 5 बजे, प्रादेशिक समाचार 5:02 पर, छाया गीत विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। शाम 5:35 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा घर आंगन। 6:00 प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर खेती बाड़ी ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:30 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा बुनियाद। 7:45 पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम कल्याणी आप सुनेंगे। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:45 पर हिंदी में समाचार। 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 10:00 फिल्मी गीतों का हमारा नियमित कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 11:00 हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और हमेशा की तरह 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इग्नेश कुमार और जानकी देवी की आवाज में चंद

0: सुनिए विरह रस का गीत राग जनानी झूमर में। कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा सज धज कर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, परंतु जब कृष्ण नहीं आते हैं तो वो बेचैन होकर अपने श्रृंगार को तोड़ देना चाहती है। स्वर है जानकी देवी और साथियों का।
1: लाली लाली तारंगे, लाली लाली तारंगे, कुसुमिता सारी भाई बसिया के ललकारी बसिए सब दह दे।

0: लोक गीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है नागपुरी लोक गीत, स्वर है जानकी देवी और साथियों का। पहले गीत में किस्म किस्म के फूलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, गेंदा, गुलाब, कचनार, जूही, बेली, कमल, केवड़ा, कनैली जैसे फूलों को देख कवि का मन आनंदित है। राग दोहरी डमकच के इस गीत को सुनिए जानकी देवी और साथियों के स्वर में।
1: धाधा की धावैया फूले, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारास हो, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारास हो, गेंदा गुलाब फूले, फूले कचनार आनंद लागे खेली।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में ही अब सुनिए एक हरिया डमकच राग पर आधारित लोकगीत। इस गीत में कवि कह रहा है, माघ महीने के आंधी तूफान और बर्फबारी ने बसंत के आगमन का संकेत दे दिया है। खिले खिले फूल, सुगंधित बयार और कोयल की कूक वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं।
1: या गेला का आंधी धुका, आ गेला का पथल पानी, आ गेला

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश में इग्नेश कुमार और जानकी देवी की आवाज़ में चंद लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गीतों गजलों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में चंद गज़लें, कार्यक्रम था स्वर सरिता। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
8: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

0: अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star.

0: to answer listeners' queries. To participate, simply dial 011-233-1444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can send your queries via WhatsApp to 9289094044 or post your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night, chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals. Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, which was later adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakel.
1: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honour on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is a top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptick, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
3: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जेटेड क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार। मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जाँच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवन्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। महिला टीम 4th स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एआई और डीप टेक को भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बताया है। कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत

0: बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 319 इंटर और प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के लिए बनी सरकार की समिति की आज पहली बैठक होगी। इस समिति में 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट भवन में दिन के 11:30 बजे से बैठक होगी। समिति में मंत्री दीपिका पांडे, राधा कृष्ण किशोर, संजय यादव, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से रांची में आज जनजातीय किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण एवं सशक्तिकरण के लिए सशक्त परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजधानी में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और घरों में अनावश्यक रूप से तेल जमा नहीं करने की अपील की है।
2: हम लोगों की समीक्षा में पाए गए कि जो पहले से जितना सप्लाई थी वो सप्लाई अभी भी उपलब्ध है, और लेकिन किसी कारणवश जो एक पैनिक की अवस्था में बहुत सारे लोग जो है जितना रिक्वायरमेंट है उससे अधिक गुना में जो भर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सप्लाई में जो समस्या आ रही है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उनको बताए हैं कि पैनिक में किसी तरह का लोग न आए।
1: विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के तीसरे दिन धनबाद मंडल ने कल विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त यात्रा के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत यात्रियों को दोबारा उपयोग योग्य बोतलों के इस्तेमाल, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और रेल परिसर में कचरा न फेंकने की अपील की गई। साथ ही पोस्टर, उद्घोषणा और सीधे संवाद के जरिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी। गोमती नगर से यह ट्रेन 28 मई से 18 जून तक हर गुरुवार और खुदरा रोड से 30 मई से 20 जून तक हर शनिवार चलेगी, जिसमें धनबाद के यात्रियों के लिए गोमो और बोकारो के लिए भोजुड़ी में ठहराव रहेगा। हजारीबाग जिले के कोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में 1 का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
3: जांच के क्रम में एवं जब इनको छानबीन किया गया, इनकी तलाशी ली गई, तो कुल मिलाकर हमें 3 स्मार्टफोन, 20 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 अपाचे गाड़ी और 1 क्रेटा कार पकड़ाया गया। अनुमानित मूल्य इसका लगभग 10 से 15 लाख तक होता है, मतलब होलसेल में जब इनको, लेकिन जब ये लोग इसको तोड़ तोड़ के बेचते हैं या जो खुदरा क्रम में बेचते हैं तो इनका रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है।
1: दुमका जिले में पुलिस ने सक्रिय अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर मुफस्सिल और शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी हुए 2 ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल से बरामद किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: आने वाले दिनों में भी आपको कुछ कुछ जगह पर थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश, तेज हवा, आंधी देखने को मिलेगी। तीन दिन के लिए जो विंड स्पीड है उसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गस्टिंग टू 60। 18 में थोड़ा सा हवा की गति बढ़ सकती है जिसमें कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से विंड स्पीड गस्टिंग टू 70 भी कुछ जगह पर जा सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में।
1: कल जिले हजा का चांद नहीं दिखने के कारण देश भर में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी, यह घोषणा इमारत ए सरिया ने की। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित पहले CASA रग्बी सेवन्स 2026 में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पुरुष टीम में झारखंड के डेविड मुंडा भी शामिल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक जागरण ने लिखा है, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ रिश्तों को रणनीति साझेदारी में बदलेगा भारत। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए आज बैठक करेंगे 5 मंत्री। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश में राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग, 15 मिनट में 68 यात्रियों को बचाया। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, जलापूर्ति व्यवस्था पर मुख्य सचिव सख्त, सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेटेट क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार, मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुर्दा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवन्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम चौथे स्थान पर रही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है। अपने आप पर आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: मीडियम वेव 546.4।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर किए आपको सुनवाते हैं ये पहला गाना जिसे हमने लिया है। फिल्म है बॉम्बे और आवाज़ चित्रा की है।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म क्रिमिनल में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है दुश्मन।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय और शब्द दोनों अनमोल होते हैं, इनका सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। एक बार निकला हुआ शब्द और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता है, समय जीवन भी उसकी कद्र नहीं करता है, और जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आज आपको ज्ञान विज्ञान में बताते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। एंड्रोमेडा गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे प्रसिद्ध और विशाल आकाश गंगाओं में एक है। यह हमारी अपनी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के सबसे पास स्थित बड़ी गैलेक्सी मानी जाती है। साफ और अंधेरी रातों में इसे बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है। यह आकाश में हल्के धुंधले बादल जैसी दिखाई देती है। एंड्रोमेडा का नाम यूनानी कथाओं की राजकुमारी एंड्रोमेडा के

नाम पर रखा गया है। प्राचीन खगोलविदों ने इसे बहुत पहले देख लिया था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने समझा कि यह हमारी गैलेक्सी से अलग एक विशाल आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका अर्थ ये है कि आज हम जो प्रकाश देख रहे हैं वह वहाँ से 25 लाख वर्ष पहले चला था। आकार और संरचना इसकी कैसी है? तो एंड्रोमेडा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसमें अरबों तारे, गैस, धूल, ग्रह जैसे मौजूद हैं। इसका आकार हमारे मिल्की वे से बड़ा माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे हो सकते हैं। सबसे रोचक बात यह है श्रोताओं कि एंड्रोमेडा और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, बढ़ रही है एक दूसरे की तरफ। वैज्ञानिकों के अनुसार 4 से 5 अरब वर्षों के बाद दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा सकती हैं। यह टक्कर किसी फिल्म की तरह अचानक नहीं होगी, बल्कि करोड़ों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया होगी। संभव है कि दोनों मिलकर एक नई विशाल गैलेक्सीज बना लें। क्या हम लोग, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम लोग एंड्रोमेडा को देख सकते हैं, तो हाँ, यदि आसमान साफ हो, रोशनी कम हो, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। इसे देखने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर और जनवरी के बीच। एंड्रोमेडा का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने ये समझा और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि गैलेक्सीज आखिर कैसे बनती हैं, तारों का जन्म और विनाश कैसे होता है, भविष्य में हमारी मिल्की वे का क्या होगा। एंड्रोमेडा इतनी विशाल है कि इसका प्रकाश रात के आकाश में एक धुंधले धब्बे के जैसा दिखता है। यह हमारी लोकल ग्रुप, लोकल गैलेक्सी समूह की सबसे बड़ी गैलेक्सी मानी जाती है। इसमें कई छोटे छोटे उपग्रह गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। M31 नाम से भी इसे जाना जाता है। जब हम एंड्रोमेडा जैसे विशाल गैलेक्सीज को देखते हैं तो एहसास होता है कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमय और कितना अनंत है। इंसान की जिज्ञासा ही उसे सितारों तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना

0: क्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। आज सेहतनामा में बात करते हैं एक देसी सुपर फूड के बारे में। अब ये क्या है? ये है खट्टी मीठी इमली, जो सबके घर में पाई जाती है, हमारे किचन में तो जरूर होती है। भारतीय खान पान में उपयोग होने वाली सामग्री के सेहत पर अच्छे असर को दुनिया ने माना है। मौसम के बदलाव हो या कोई स्वास्थ्य समस्या, रसोई में मौजूद देसी खाद्य सामग्री का कोई नुस्खा जरूर काम आता है। आज हम बात कर रहे हैं खट्टी मीठी इमली के बारे में और इमली में क्या क्या पाई जाती है, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसकी जानकारी अभी मैं आपको दूंगी। इसमें कैलोरी होती है 239, कार्बोहाइड्रेट होते हैं 62 ग्राम, फाइबर होते हैं 5 ग्राम, प्रोटीन 2.8 ग्राम, शुगर 57 ग्राम मिलीग्राम, पोटेशियम 628 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 92 मिलीग्राम, आयरन 2.8 मिलीग्राम और विटामिन सी पाया जाता है 3.5 मिलीग्राम। और फाइबर की जो फहरिस्त है वो भी बहुत लंबी है। कार्बोहाइड्रेट और क्लोरीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो तुरंत ऊर्जा देती है। पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है जो रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद करती है। पाचन और कब्ज की समस्या में भी सुधार करती है। इसमें टार्टरिक एसिड होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। खान पान में इसका इस्तेमाल दक्षिण भारत में सांभर रसम के मुख्य आधार के रूप में इमली का उपयोग किया जाता है। इसमें दालों को विशेष खटास और स्वाद देने के लिए इसका यूज किया जाता है। समोसे, टिक्की और गोलगप्पे के साथ मिलने वाली मीठी चटनी इमली और गुड़ से तैयार की जाती है। उत्तर भारत में अरबी या भिंडी जैसी सब्जियों में खटास के लिए इमली डाली जाती है। मुरादाबादी दाल या कुछ खास तरह की चने की दालों में इमली के पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक एसिड के कारण इसका उपयोग अचार को लंबे समय तक खराब ना होने देने से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लू से बचने के लिए भी इमली को भिगोकर उसके पानी में चीनी या नमक डाल करके पीने का भी कहीं कहीं इसकी भी परंपरा है। और ध्यान रखने योग्य बात ये है दोस्तों कि ज़्यादा इमली खाने से दांतों की ऊपरी परत घिस सकती है, जिसमें सेंसिटिविटी का खतरा रहता है। जुकाम या गले में खराश होने पर इमली खाने से परहेज करें। डायबिटीज़ के मरीज जो हैं वो सीमित मात्रा में इसे खाएं। तो एक सुपर फूड है जो गर्मियों में भी काम आती है और इसकी खट्टी मीठी स्वाद तो सबको पसंद आती है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बूढ़े। तो अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते आज बारी है एक टिप्स की। ये टिप्स नहीं है, ये है एक आम लस्सी। आम लस्सी का मतलब, इसमें आम मतलब मैंगो, और लस्सी तो आप लोग सब जानते ही हैं कि कैसे बनती है। अब उस आम में अगर लस्सी का रूप दे दिया जाए तो कैसा हो, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और आम आ ही चुके हैं। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं पके हुए आम के, एक कप लेना है, एक कप दही लेना है और चीनी स्वाद के अनुसार, पानी आवश्यकता अनुसार, आइस क्यूब तैयार रखना है, पुदीने के पत्ते भी रखने हैं गार्निशिंग के लिए। पुदीने के पत्ते के अलावा बाकी सभी सामग्री को ग्राइंडर में मिला करके पीस लें और फिर चीनी एडजस्ट करें, आपको जितना चाहिए उतना डालें, एक ग्लास में डालें और ऊपर से पुदीने के पत्ते गार्निश करें और तुरंत इसे सर्व करें। देखिए ठंडा कितना मज़ा आएगा आपको पीने में, ठंडक तो मिलेगी ही, साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। तो कार्यक्रम जोहार पलामू में आज के लिए इतना ही, अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दे, नमस्कार और सुनते रहें ये प्यारा सा गीत।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र।

0: रदास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेशदास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए, बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir.
2: That's very nice, children.
10: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes.
10: Story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir.
10: We love to recite it.
2: as I

0: artists Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist Mayank Kumar. Assistance in production Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा।
1: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है। विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
2: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
3: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
4: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
5: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
2: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
6: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
7: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
8: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी

0: पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
2: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
3: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा।
3: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
3: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
2: अच्छा।
3: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
3: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
2: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी

0: ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी 2 दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Changes they have witnessed in India in recent years. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway and the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Congress leader V.D. Sathishan will be sworn in as Chief Minister of Keralam in a short while from now. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram at 10 this morning. The Chief Minister designated yesterday evening unveiled a 21-member UDF cabinet ahead of today's swearing-in ceremony. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas, LPG, arrived at Deendayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Simi started its journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait of Hormuz. In landmark decisions, Suvendu Adhikari-led BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. This decision will officially take effect from May 11, 2026. In tennis, Jannik Sinner won the Italian Open title in Rome after defeating Casper Ruud of Norway 6-4, 6-4 in the final. With the victory, Sinner became the first Italian man to win the tournament since Adriano Panatta in 1976. And that is the end of this news bulletin.
1: और मैं अमित जी के पास गया बहुत ख्याल रखते हैं मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ चाहे हमने काम नहीं किया तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं
2: जी जी
1: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था उसमें था और सब हर सेटिंग में स्टोरी सेटिंग में भी होते थे शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
2: जी
1: वो भी अमेरिका टूर किए तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर तो दो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा डीटी में जाएंगी वो भी होगा बाकी लोगों को नहीं काम इस तरह की कुछ बात बोला पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर कभी मैं ना नहीं करता
2: जी
1: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
2: जी जी जी
1: अलबत्ता मैं आया मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है उसमें राखी का रोल नहीं था
2: ओके ओके
1: जो सब्जेक्ट सुनाया
2: जी
1: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे नया न्यू कमर राइटर
2: जी जी जी
1: उन्हीं का नाम है राइटर है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है तो मैंने चिंटू से कहा मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है टोलू में सुलोन का ये 8 फिल्म कर आए।

0: आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल पिक्चर, यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल। वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में, उनकी जो उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया। विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था,
1: जी
0: रिस्की था। लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे, सागर
1: जी
0: साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे। सोचने का जो ढंग था, हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी
1: हाँ
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है। और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आयशा से कहा, बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग हैं, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगिनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा, जो सत्यन कपूर को रोल दिया था, गीता
1: जी
0: सिद्धार्थ उनकी वाइफ है,
1: जी
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे राखी
1: जी
0: के
1: जी
0: बदले,
1: जी जी
0: क्योंकि वो उस तरह के रोल करती थी।
1: जी
0: तो मुझे राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना। मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया
0: हाँ,
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तो बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी।
1: जी
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं थी।
1: जी जी जी
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ये करूंगी।
1: वाह
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस तो और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं, वो
1: हाँ
0: खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई,
1: हाँ
0: मैं तो असिस्टेंट
1: ये
0: डायरेक्टर था
1: तो बहुत
0: ना,
1: बड़ी बात
0: नया
1: है। पहली
0: बन रहा था।
1: फिल्म
0: तो
1: थी आपकी?
0: पहली फिल्म और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो ने जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे।
1: जी
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर। उनकी चैन अगली पिक्चर जो थी, मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं
1: बहुत
0: दूर
1: अच्छा,
0: निकल
1: बहुत
0: जाए।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कह रहे हैं। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि 2 पेज की कहानी का वो था, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यजी से थोड़ा सा रूठा था दूसरे आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे
0: हाँ
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दांत के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे
1: हम
0: वाह,
1: दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा गप से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई,
0: जूली
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप
0: कुंवारा
1: या
0: बाप मिली।

0: अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसे चीज से कहा, ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा सा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं इससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे, बोला करूँगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले,
0: बहुत नहीं। फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था, वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म इट

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ही ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, साइन में रहता था, तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था थॉडी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे, थॉडी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा

0: ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को नहीं, ऐसा बोलता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की। उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
1: मराठी
0: मराठी में,
1: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के।
0: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
1: जी,
0: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत फटाफट करते थे
1: जी,
0: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय करते थे लाइफ को, वो 6 महीने का पैटर्न। और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
1: यस
0: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे। और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
1: बाबा
0: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही।
0: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता था। गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश वैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
1: बाबा
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है। उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा है डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ। उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रास की फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके 2-4 नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं।
1: हाँ ये कौन है?
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फ़ोन करती हूँ। उन्होंने फ़ोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ व्यू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा 2 मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है वो ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक लिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ।

0: और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक इज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है, बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने वो लोग मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता। मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 400 BC की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट से कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे।
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊँ लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया, हो गया।
1: ये दूसरा आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी। में ये मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके?
1: हाँ।
0: सामने।
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे आ जाओ, सुबह। हाँ। नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और फिर करो। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूंगा तेरे, ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहाँ पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहाँ पहुँचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
1: तो बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब यह है कि डेटें तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटें, जनवरी में करूँ, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, आउट ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी,
0: वाह वाह,
1: चाहे ट्यूजडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूजडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी,
1: अलबत् तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम,
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट ही करनी शुरू की,
0: हाँ,
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ,
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है, और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा रमेश बैल सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वोट सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था, और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर, वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, ओए क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा? वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडू करके आया ठंडी में काम पर रहा हूँ, साले ये मर जाएगा कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन है एक्टिंग? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। तो यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया सर उसने, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ, तो वो बुला लेता था बियर पीनी है तो मैं गरम बियर पीता हूँ।
0: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: रंग तरंग
1: सभी सुनने वालों को नमस्कार। रंग तरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यह है लकी अली की आवाज, असलम के बोल और लकी अली का संगीत।

0: 그래요.
1: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं सोनू निगम की धुन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना एल्बम से अभिजीत की आवाज में नुसरत बद्र के बोल और सप्तर्षिका संगीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

शान की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना और यही है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला

0: समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैंने प्यार किया फिल्म से। एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली के बोल, राम लक्ष्मण की तर्ज।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थीं, रविंद्र रावल के बोल थे, और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

फिल्म लोफर का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: संवार है,
1: बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है। ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
0: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
0: प्यार का राग सुनो रे,
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म का गाना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: हाँ, हाँ।
1: देते रहो।

फिल्म पारस का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मजबूर का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
1: ये है फिल्म महल का गाना, आशा भोसले की आवाज में। साथ में आप सुन रहे हैं देवानंद की आवाज।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है।

आशा भोसले और डैनी की आवाज़ों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या

0: Kari-led BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना। मजदूर के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला लोहरदगा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और गौरव का विषय है। यह सम्मान न केवल प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक है, बल्कि विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सशक्त उपस्थिति को भी दर्शाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री को प्राप्त यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने शहरवासियों की सुविधा के लिए रांची के 5 प्रमुख चौराहों पर वाटरप्रूफ ट्रैफिक शेड लगाने की योजना बनाई है। पहले चरण में अरगोड़ा चौक, सरना चौक, सहजानंद चौक, लालपुर चौक और करमटोली चौक पर आधुनिक डिजाइन के मजबूत स्टील फ्रेम और वाटरप्रूफ सामग्री से बने शेड लगाए जाएंगे। प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही इस योजना पर काम शुरू होगा और सफलता के बाद इसे शहर के अन्य व्यस्त चौराहों पर भी विस्तार किया जाएगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के बेड़ों में किसान सम्मान समारोह में कहा कि किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, स्प्रेयर समेत अन्य उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं। मौके पर मंत्री ने मत्स्य पालन और केस फार्मिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण बाजारों को सशक्त बनाने और कोल्ड स्टोरेज निर्माण की बात भी कही। कम वर्षा की संभावना को देखते हुए उन्होंने किसानों से धान के साथ साथ मोटे अनाज और कम पानी वाली फसलों की खेती पर ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अप्रैल 2026 को मंजूर की गई झारखंड अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 को टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने आम जनता के लिए काफी लाभकारी बताया है। धनबाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग भवन नियमितीकरण की समस्या से परेशान थे, जिसे राज्य सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है।
2: जो भवन बन के तैयार था क्षेत्र में, जिसका किसी तरह का उपयोग या नहीं कोई कानून नीति बना, वैसे लोगों को यह बताया गया है कि कम से कम वैसे लोगों को 2 महीने के अंदर अप्लाई अगर करेंगे तो उसको स्थायीकरण का भी मान्यता उसको दिया जाएगा और उसका जो सरकारी राशि है उसको दिया जाएगा, उसको वैध माना जाएगा।
1: रांची जिला प्रशासन ने संवेदनशील कार्रवाई करते हुए 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राधेश्याम नाथ को 24 घंटे के भीतर सर्वजन पेंशन योजना और आयुष्मान कार्ड का लाभ उपलब्ध कराया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर समाहरणालय

0: टीम ने बुजुर्ग के घर जाकर पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड सौंपा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता तुरंत मिल सके। लाभ मिलने पर राधेश्याम नाथ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन का आभार जताया।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सौजन्य से मुझे 12 घंटे के अंदर आयुष्मान कार्ड तथा अन्य और कार्ड पेंशन प्राप्त हुआ। हम उनको तहे दिल से अपना धन्यवाद देते हैं।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पूल साइट पर फायरिंग और लूट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके से अपराधियों द्वारा छोड़ी गई बाइक बरामद की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार एक बाइक से पहुंचे 3 अपराधियों ने मजदूरों के साथ मारपीट कर करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन लूट लिए और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। इस बीच मजदूरों का विरोध देख बदमाश घबरा कर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चतरा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र से 1 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। SP अनिमेश नथानी ने बताया कि उसके पास से करीब 4 किलो अफीम बरामद हुई।
2: सत्यापन में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से 2 थैला में सेमी लिक्विड पदार्थ अफीम जैसा बरामद हुआ, जिसकी हम लोगों द्वारा टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि 3 किलो 972 ग्राम अफीम उसमें बरामद हुआ है। साथ ही 2 किलो गुड़ भी अलग से थैली में बरामद हुआ है, जिसको जब्त किया गया।
0: साहिबगंज जिले में 300 चोरी या गुम मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। सिद्धो कानो सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि मोबाइल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ साथ इस तरह की घटनाओं में शामिल युवाओं को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी।
3: पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने समेकित एक कार्य योजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। एक पक्ष है उसको कि उन ऐसे सब लोग भी इसमें शामिल हैं, उनको रोजगार के अन्य अवसरों मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि वो इस तरह के कार्यों में सम्मिलित न हो। दूसरा पहलू है कि जो लोग इसके बाद भी जो हम लोग मौका दे रहे हैं उसके बाद भी इस कार्य में लिप्त है, इस गलत कार्य में, उसको पकड़ा जाए, परेश किया जाए। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने 300 मोबाइल रिकवर किया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 23,530 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटे में गुमला और लोहरदगा जिलों के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता।

जिम्मेदारी। रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना। मजदूरों के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार, गिरफ्तार।

मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारी श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंटी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता

0: है जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और दो तीन साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभयारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में लिए गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने संजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था? और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
0: अरे
1: चुपके से दिल दे दे
0: नहीं ते
1: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने

देर तक खड़े रहे। अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई। कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तब उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही? श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार ढूंढने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं। क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूं। अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो, सभी जब भी फुर्सत में रहती हूं जरूर पलट कर देखती हूं और कुछ उसमें से फोटो निकाल कर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूँ। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी। न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूं और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई। और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम करा कर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात। मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत यादों के एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहाँ क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो, अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने। छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है, और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब ना कोई गिला है, ना किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहां गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं कौन, वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहां, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24

24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है, परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है, और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा

हिस्सा ही सुनवा सकी। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है, प्रेम की। आठवीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था, वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं। क्या बात है, ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती हैं तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती हैं। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें यह संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

हम पुकारे रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट, एक साथ होता है।

आज के आधुनिक युग में भले ही लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हों, लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: finish, and everyone must continue working tirelessly.
1: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly, and keep bringing new ideas and innovations forward.
0: Indian Railways has said a detailed inquiry is underway to ascertain the cause of the fire that broke out in one of the passenger coaches at Sasaram Railway Station in Bihar. According to East Central Railways, the incident occurred at around 5:30 a.m. when smoke was detected from one of the coaches of the Sasaram Patna passenger train, which was standing at the platform. During the incident, the coach was empty and no passengers were present. Railways informed that no injuries or harm to passengers or railway staff has been reported. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today travelled by Metro under Mera Bharat, Mera Yogdan and Metro Monday campaign to promote public transport and fuel conservation. Talking to reporters, Ms. Gupta appealed to all residents to use public transport as much as possible. She said the government is making every effort to ensure there is no inconvenience in public transport and to improve last mile connectivity.
2: We are making every possible effort from the government side to ensure that there is no difficulty in public transport. Greater focus is being placed on improving last mile connectivity. When every individual contributes even a little towards this effort, it will greatly benefit the city of Delhi. It will help provide solutions to various problems in our city, from pollution to several other challenges.
0: Delhi Metro is running 24 additional train trips today to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation said the decision has been taken keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. U.S. President Donald Trump has warned Iran the clock is ticking as talks to bring the war to an end have stalled. The remarks come as Washington and Tehran sit locked in a test of wills, waiting to see who blinks first to end the stalemate in the war in the region. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including one silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiang Shan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing fifth in the men's 110 kg+ category. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
4: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
5: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
6: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും.
3: രാജ്യപാൽ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറിനെ

0: यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल, समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में

0: मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानियां फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के।

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर

0: सही ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप
1: के लिए जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में राज्य के सभी प्रमंडलों में नियुक्तियां की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन जल्द ही विश्वस्तरीय बनेगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत 290 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास कार्य तेजी से जारी है। यहां 6 मंजिला आधुनिक भवन, आधुनिक प्रतीक्षालय और 10,000 वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने इस बड़ी योजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकों से एक समय का भोजन न करने का आग्रह किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि गृहमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने नागरिकों से केवल सरकारी स्रोतों से ही सत्यापित जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। नागरिकों को केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध जानकारी, वीडियो या तस्वीर को पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर भेजने की सलाह भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अब चतरा जिला सीधे रेल सेवा से जुड़ेगा। रेल मंत्रालय ने बिहार के परैया से चतरा तक 75 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। करीब 2500 करोड़ रुपए की इस विशेष परियोजना की जानकारी आज स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने प्रेस वार्ता में दी।
2: चतरा और गया का रेल लाइन का अधिसूचना जारी हो गया, जो 75 किलोमीटर का रेल लाइन है। विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ जो अलॉटेड हुआ है, उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए। जितने भी अड़चने हो, फॉरेस्ट का, एनओसी का हो, जितनी भी चीजें हो, उनसे जितनी भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हो आगे के कार्य की प्रगति करे, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है।
1: सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि पूर्व में टुक्कूपानी से 42 किलो गांजा और 3 पिस्तौल के साथ तस्कर पकड़े गए थे। इसी मामले में एसपी श्रीकांत एस खोटरे की विशेष टीम ने बिहार और ओडिशा के 2-2 अन्य आरोपियों को दबोचा है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों के लिए येलो और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। सराईकेला खरसावां द्वितीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी और जिला योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथियों ने विजेताओं को मेडल सौंपे। अब ये खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: सखी सहेली सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार तो मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया हमें सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग,
0: मुद्दत हो गई
1: जमाने गुजर गए, आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
0: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
1: भाई, खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
0: क्या बात है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
1: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी, आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
0: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है। क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ, मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
1: जी।
0: और तो, आज एक खास दिन भी है
1: जी।
0: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
0: हाँ।
1: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर के। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी, कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना
1: जी
0: हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और
1: बहुत ही
0: भाई सुनने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी।
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की,
1: साथ
0: जुदा
1: रहने
0: ना
1: की,
0: होने की, और
1: बिल्कुल
0: कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
2: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
3: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
2: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
4: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता।
2: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
4: चलिए मैं रख देता हूं।
2: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
0: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
2: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मैने का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था, न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज, 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती, और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने? और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा? सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं? अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता? चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हा, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
4: कौन कौन है? कौन है रे? रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है? कौन है?
2: मुझे मालूम हुआ, नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था। जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में भी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
5: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
2: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
5: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
2: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
6: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
2: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
6: मर कही है क्या बाबूजी?
2: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
6: अभी तो दूध देती है।
2: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
6: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
2: तुम्हारी मेहरबानी।
6: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
2: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
5: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
2: हाँ, बहुत खूबसूरत।
5: ये चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
2: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
5: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
2: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
6: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
2: देवी जी ने कहा,
5: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
2: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी, उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
7: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
8: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन, समय और दादाजी, पिताजी, काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
1: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: हुए हम
1: फिर
0: बढ़
1: से स्वागत है।
0: जी। और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है।
0: जी, और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है
0: जी
1: एचआईवी, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा
0: जी
1: से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी
0: संदेश
1: बल
0: है
1: देता है।
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में वो बहुत
0: बिल्कुल,
1: सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र,
1: जी
0: पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा
1: जी
0: चलता
1: जी
0: था,
1: जी
0: मलमल कैसा होता था, तो
1: बिल्कुल,
0: ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब कितनी वजन
0: हाँ,
1: वाली, कैसे वो
0: हथियार।
1: लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं, वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको
1: जी
0: संरक्षित करने के उपाय करें, और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो हैं वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो,
1: बिल्कुल,
0: देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार
1: छूते
0: बार
1: हैं,
0: हाथ
1: हाँ,
0: लगाते
1: वो सब
0: हैं।
1: नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग सी
0: रगर
1: लगा
0: रह
1: रखती है,
0: रहती है,
1: डोरी
0: हाँ,
1: लगी रहेगी
0: डोरी
1: या
0: लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब
1: अच्छा
0: पुराने,
1: नहीं
0: बहुत
1: लगता
0: समय
1: है।
0: से संजो कर रखा गया है,
1: जी
0: इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: पहुंचाएं, सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजू जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स में,
0: कई
1: तो बड़ा अच्छा
0: संग्रहालयों में
1: लगता है।
0: शोज भी होते हैं,
1: जी
0: कि लाइट शोज

0: होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा
1: बिल्कुल,
0: उस वक्त
1: करीब
0: के
1: पहुंच
0: बारे
1: जाते
0: में।
1: हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो
0: और
1: चलिए
0: हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के।

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं।
1: हाँ,
0: बनारसी
1: ठीक
0: टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मिर्ची, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है।

0: वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
1: तो बस आप
0: तो ये मिठाई
1: बताइए,
0: है नमकीन,
1: ये तो आप पढ़ेंगी
0: पर
1: सामग्री
0: अभी पता लग
1: बताएंगी
0: जाएगा। तो
1: जी
0: भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताज़ा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताज़ा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज़्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो
1: जी
0: वो फट जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली, चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं,
1: क्या बात
0: चाहे
1: है।
0: तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: पर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गांव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात, बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: तो मोबाइल शरारते
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है, झुंझलाहट होती है कि अरे खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने का।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है, इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसरचंद।
1: और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है, साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे, टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, तो मोबाइल में की
1: तालमेल
0: भूमिका को
1: कैसे
0: जरा हाँ
1: जी
0: थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आशर की क्या बात है। हाँ ये बात तो
1: नहीं,
0: होती है ना कि अब सोते
1: बिल्कुल
0: समय भी कोई ये देख रहा है, तो
1: देख रहा
0: जबकि
1: है।
0: सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूर बरतना,
1: मुझे
0: दूरी
1: लगता है
0: बरतना
1: कि
0: अच्छा
1: राजू
0: रहता
1: जी,
0: है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं, मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूर ही रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है,
1: बिल्कुल
0: और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है,
1: और
0: लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है, वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब किए गए हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से करने की मांग की है। रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने साफ किया कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। श्री सिन्हा ने विपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। पलामू जिले के छतरपुर में NH 98 पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सलदा गांव के पास चलती बस किससे गिरकर एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची, खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी तथा मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जरूरी होता है अपने शरीर के लिए, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
2: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
2: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
2: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है, दाल मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकंड बेस्ट प्रोटीन, यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन।
2: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता
1: बिल्कुल
2: है।
1: बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके
2: जी
1: लिए हमें उसके फ़ायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, दो चीज़ें साथ में ले ले तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
2: अच्छा
1: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
2: वाह
1: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। और जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
2: अच्छा
1: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है, जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊँ तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरे

0: दूध अच्छा है,
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट

0: आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट में सिर्फ फैट परसेंटेज पड़ ले वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
1: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
0: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाप देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
0: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
1: जी जी।
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे, इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि
1: एक बीज होता है, बैंगन
0: वाले,
1: बंद कर दीजिए,
0: हाँ,
1: टमाटर बंद कर दीजिए,
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी जी ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा मूवी से ये वादा रहा
1: टाइटल
0: टाइटल
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग।
1: सुनना है आपको।
0: जी बिल्कुल
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट
1: हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो, वो
0: अच्छा।
1: डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और 2 कटोरी दाल और साथ में 2 अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो
0: ओ
1: जाएगा।
0: हो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने 1 1 गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं 4 रोटी खा रही हूँ तो मैं 2 रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
0: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
1: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो 2 मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेज जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
0: सीरम क्रिएटिनिन,
1: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
0: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है,
0: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
1: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
0: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
1: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
0: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी
0: धूप में
1: धूप हो,
0: निकले,
1: अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग

0: न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का, वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट
1: जैसे
0: होता है।
1: ऑरेंज है,
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सब सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप
1: ग्रहण
0: कर रहे
1: करना
0: हो।
1: है, बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नामक कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल
1: फिल्म
0: मूवी
1: से
0: से।
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आँखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या
1: जिस
0: धुंधलापन।
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेस है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है,
0: इसका
1: और
0: क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
0: जी
1: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है।
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी, और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
0: जी
1: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीज़ों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: नींबू
1: हैं,
0: है।
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची,
0: ओहो,
1: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी
0: हरी
1: होता है,
0: मिर्च।
1: हरी मिर्च में। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस

0: इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए,
1: अच्छा
0: क्योंकि अगर

की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी के दिनों में इन्हें पीने योग्य पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे समय में जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। गर्मी के दिन में भोजन की कमी भी पशु पक्षियों के लिए बड़ी चुनौती है। इस समय चारागाह प्रायः सूख जाते हैं, फलस्वरूप इन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। गर्मी के दिन में पशु पक्षियों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे लू एवं अपच नष्ट कर पौधों को स्वस्थ बनाते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि पशु पक्षी मानव के परम हितैषी एवं मित्र हैं। फिर भी आज के युग में मानव ने इन्हें अनदेखा किया है। वे अपना विकास तो कर लिए, किंतु पशु पक्षियों के प्रति निरंतर संवेदनहीन एवं निर्दयी बनते जा रहे हैं। प्राचीन काल अथवा मध्यकाल में पशु पक्षियों के लिए सभी जगह चारागाह एवं जलाशय की व्यवस्था होती थी, फलस्वरूप उनका जीवन सुरक्षित एवं सुखमय था। किंतु आज का स्वार्थी मानव इनके आश्रय को छिन्न भिन्न करता जा रहा है, जलाशयों को निरंतर नष्ट कर रहा है। आज उसका जीवन चार दीवारों में बंद चंपा नल एवं मोटर पर आश्रित हो गया है। ऐसे में पशु पक्षी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं तथा उनके सामने जीवन एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस संबंध में पक्षियों को करुण कथा को कवि ने इस प्रकार चित्रित किया है। गौरैया के दिन गए करती करुण पुकार, गौरैया के दिन गए करती करुण पुकार, मानो भैया आपने उपवन दिए उजाड़, मानो भैया आपने उपवन दिए उजाड़, उपवन दिए उजाड़ नहीं है दाना पानी, उपवन दिए उजाड़ नहीं है दाना पानी, कौन सुनेगा आज हमारी करुण कहानी, कौन सुनेगा आज हमारी करुण कहानी, खोज रही हर रोज कहाँ है ताल तलैया, खोज रही है हर रोज कहाँ है ताल तलैया, जहाँ फुदक कर आज पिए पानी गौरैया, पिए पानी गौरैया। अतः आज हमें पशु पक्षियों के प्रति उदार होने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति पर उनका भी समान अधिकार है। आज उनके समक्ष कई चुनौतियां उपस्थित हैं, जो खासकर गर्मी के दिनों में उनके जीवन को जटिल बनाती है। गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के कारण पशुओं का जीवन संकटमय हो जाता है। इसी से उन्हें हीट स्ट्रोक, शरीर में जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी के दिनों में इन्हें पीने योग्य पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे समय में जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। गर्मी के दिन में भोजन की कमी भी पशु पक्षियों के लिए बड़ी चुनौती है। इस समय चारागाह प्रायः सूख जाते हैं, फलस्वरूप इन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। गर्मी के दिन में पशु पक्षियों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे लू एवं अपच प्रमुख हैं। इसके अलावे गर्मी में इन्हें आवास की कमी को भी झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन्हें कई प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। शिकारियों से भी जान का खतरा बना रहता है। मानव की विविध गतियाँ, विधियाँ, रेडिएशन आदि भी इनके लिए प्राणघातक सिद्ध हो रहे हैं। अब मैं कुछ उन उपायों का वर्णन करती हूँ, जो गर्मी के दिन में पशु पक्षियों के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। सर्वप्रथम इनके लिए पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। पानी के पात्र को

समय समय पर साफ करना जरूरी है, खासकर पक्षियों के लिए छत के ऊपर मिट्टी के पात्र में पानी रखा जा सकता है। इनकी सुरक्षा हेतु छाया की व्यवस्था भी जरूरी है, जो पेड़ों या छतरी से प्राप्त किया जा सकता है। गर्मी के दिन में इन्हें ठंडा भोजन प्रदान करना उचित है, क्योंकि हरे चारे या दाने से इनकी सेहत की रक्षा संभव है। ऊपर बताए गए उपायों के अलावा पशुओं के स्वास्थ्य हेतु चिकित्सक और परामर्श भी जरूरी है। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत उपचार की व्यवस्था अति आवश्यक है। अंत में मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि मनुष्य पशु पक्षियों के साथ प्रेम एवं भाईचारा का व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि वे भी प्रकृति के जीवित अंश हैं तथा उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। उन्हीं हार्दिक भावना को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। हे मानो अब कर कृपा, हे मानो अब कर कृपा, रखो प्रेम व्यवहार, रखो प्रेम व्यवहार। मुक प्राणियों को मिले जीने का अधिकार, मुक प्राणियों को मिले जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। धन्यवाद।

श्रोता बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो कि आज 18 मई को हर साल मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि 18 मई 2026 है और विश्व भर में संग्रहालय एक विभाजितीय विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह विषय सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को बांटने, संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। संग्रहालयों की क्षमता को ये उजागर करता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। हम आज 18 मई को हम सभी इसे मना रहे हैं। इसका उद्देश्य होता है, जैसा कि हमने कहा, कि हर क्षेत्र से जुड़े हर विषय पर हम बात करें। और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य हमें ये भी बताता है कि हम किन किन विषयों को लेकर आगे बढ़ें। संग्रहालय दिवस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संग्रहालय में अनेक तरह की किताबें होती है जो हर भाषा में होती है, और उसे हर भाषा में जानने के लिए हम सभी को समझना होता है। और हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तमिल है, हर भाषा जिसमें हम उजागर होते हैं। तो आज हम संग्रहालय दिवस हम सभी मना रहे हैं। और अब आइए सुनते हैं एक गाने को।

इसी गाने के साथ कार्यक्रम घर आंगन से हमें दीजिए इजाज़त। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। फिर 103 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और पांचवें से सातवें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज बाबा नगरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। देवघर आगमन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने उनका स्वागत किया। भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने आज दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में पसरी गंदगी और कुव्यवस्था को देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत बदलने की मांग की है। गढ़वा में जिला प्रशासन की ओर से आज से सप्ताह भर चलने वाले जनजातीय गरिमा उत्सव और जन भागीदारी अभियान की शुरुआत हो गई है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि सबसे दूर सबसे पहले नीति के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। खूंटी के बरसा कॉलेज में आज टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा जिला टॉपरों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन ने सीएसआर के तहत कॉलेज को करीब 60 लाख रुपए के डेस्क बेंच भी उपलब्ध कराए। कार्यक्रम में सांसद कालीचरण मुंडा और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डीबी सुंदरम मौजूद रहे। हजारीबाग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सत्ती ने आज कोलघट्टी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और रखरखाव की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 हो चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

ग्रामीणों को संबोधित आज के इस ग्रामीण खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आप चर्चा में आप जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, साथ ही साथ आप सुनेंगे गर्मा मूंग की खेती में कीट प्रबंधन। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको एक सफल किसान से ली गई भेंटवार्ता सुनाएंगे। भेंटवार्ताकार है उमेश उरांव और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रदीप कुमार सिंह। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मूलतः कृषि प्रधान देश है, जहाँ की जनसंख्या जो है ज़्यादातर जनसंख्या खेती पर ही निर्भर है। कृषि उत्पादन मुख्य रूप से वर्षा और सिंचाई पर ही आधारित होता है। तो वैसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता होना जरूरी हो जाता है, और ऐसा न होने पर फसलों की जो पैदावार है वह प्रायः प्रभावित होने लगती है। श्रोताओं, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मूल उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना तथा प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत को लागू करना था। श्रोताओं, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो भी किसान भाई हैं उन्हें आधुनिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, जल के सही उपयोग को बढ़ावा मिल सके, हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे, जल संरक्षण और जल संचयन दोनों को बढ़ावा मिले, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जिसमें कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली हो या फिर स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली हो, उन बातों को, उन तकनीकों को प्रोत्साहित करना, खेत में पानी की बर्बादी को भी रोकना, कृषि उत्पादन और किसान भाइयों के आय में वृद्धि करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ श्रोताओं, वर्षा जल का संग्रहण और भू जल स्तर को बढ़ाना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था मजबूत करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। श्रोताओं, योजना की अगर हम मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला बात हो जाती है इसमें हर खेत को पानी। जी हाँ श्रोताओं, उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि सिंचाई की सुविधा विकसित ही नहीं हो, जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है, वहाँ पर नहर, तालाब, कुएं, चेकडेम या फिर पाइपलाइन, इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करना और किसान भाई के खेतों तक पानी की पहुँच उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित करना ही हर खेत को पानी पहुँचाने की बात साबित होती है। प्रति बूंद अधिक फसल, जी हां श्रोताओं, जल की बचत पर ही हम आने वाले समय में सिंचाई कर सकते हैं, तो इसके लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई, इन तकनीकों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ किसान भाइयों को इसके लिए प्रोत्साहन और अनुदान भी दिया जाना, जिससे कि कम पानी में हमारे किसान भाई ज्यादा उपज प्राप्त कर सके। वर्षा के पानी को संग्रहित करना, साथ ही साथ भूजल के पुनः भरण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जिसमें कि खेत में तालाब, जलाशय, मेड़बंदी और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण का होना भी इसमें शामिल है। श्रोताओं, आधुनिक कृषि उपकरण और सिंचाई तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जाता है इसमें। इसमें पानी और समय दोनों की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। जी हाँ श्रोताओं, यदि हम

कृषि की आधुनिक तकनीकों को उपयोग करेंगे तो कम लागत कम समय में ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इस योजनाओं को किसान भाइयों तक सुलभ बनाने के लिए और इसके योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए, विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए इसे कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जितने भी अधूरी सिंचाई योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना, जिससे कि किसान भाई को जल्दी से लाभ मिल सके। मध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई का नेटवर्क का विस्तार करना, इसमें कि छोटे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। वाटर सेट का विकास, मिट्टी और जल संरक्षण का कार्य इसमें शामिल है, इसमें भूमि की उर्वरकता बढ़ती है और जल संरक्षण का भी कार्य होता है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के जो तकनीक है श्रोताओं, उन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किसान भाई को आर्थिक सहायता भी इसमें दिया जाता है, जिससे कि जल की बचत भी हो और भरपूर फसल की भी प्राप्ति हो सके। श्रोताओं, इस योजना को लागू करने से हमारे किसान भाई को कई चीज़ों में, कई बातों में लाभ प्राप्त होती है। अगर हम बात करें पानी की बचत की, तो ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के अपनाने से पानी की काफ़ी बचत भी हो जाती है और कम पानी में ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई भी श्रोताओं हो जाती है। समय पर यदि सही मात्रा में पानी मिलती है तो निश्चित रूप से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं और हमारे किसान भाई को इस योजना से श्रम और बिजली की भी लागत कम आती है, तो कहीं ना कहीं किसान भाई को इसका आर्थिक लाभ भी मिलता है। और श्रोताओं, वैसे स्थान जहाँ पर वर्षा कम होती है तो उनके लिए यह जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। बेहतर उत्पादन और कम लागत के कारण भी हमारे किसान भाई को आय में वृद्धि हो रही है और जल संरक्षण तथा भूजल स्तर के बनाए रखने में यह योजना बहुत ही बड़ी भूमिका भी निभा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण होता चला जा रहा है श्रोताओं। हालांकि हर चीज़ों में, हर बातों में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ, कुछ ना कुछ बातें शामिल होती हैं, तो इस योजना में भी चुनौतियाँ हैं। सर्वप्रथम कि आधुनिक जो भी सिंचाई के उपकरण हैं प्रायः वह महंगे हैं, कहीं कहीं तो बिजली और पानी की कमी भी है और तकनीकी जानकारी के अभाव भी हमारे किसान भाई इस तकनीक को अपनाने में संकोच करते हैं और अनुदान प्राप्त करने में भी देरी होती है और साथ ही साथ कई किसान भाइयों को इस योजना की पूरी जानकारी नहीं है, तो इन सब बातों की चुनौतियों का भी सामना इस योजना को करना पड़ रहा है। तो इसके लिए श्रोताओं कि गांव में ही जल का संरक्षण का अभियान चलाइए, योजनाओं की प्रक्रिया को सरल बनाइए और इस विषय पर अपने गांव में ही प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाइए, जिससे कि लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो श्रोताओं, यदि देखा जाए तो भारतीय कृषि सिंचाई योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना में श्रोताओं जल का संरक्षण, आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि के उत्पादन बढ़ाने में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल, इस लक्ष्य को हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति उनकी तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ स्वयं भी काफ़ी सशक्त हो जाते हैं। और इस योजना का यदि सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, हमारे किसान भाई को पर्याप्त जानकारी और सहायता मिले, तो निश्चित रूप से भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था और भी सशक्त मजबूत हो सकती है और इसके फलस्वरूप हमारे किसान भाई के आय में भी काफ़ी बड़ी वृद्धि देखी जा सकती है। तो श्रोताओं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मूल रूप से यदि देखा जाए तो हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही कारगर योजना है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, हमारे फसल के लिए भी लाभदायक है, हमारे आर्थिक लाभ की भी हम बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी लाभप्रद साबित होती है। तो श्रोताओं, इस योजना से जुड़े और इसका भरपूर लाभ लें। तो श्रोताओं, इसी चर्चा के साथ आइए अब आपको हम सुनवाते हैं उमेश उराव से ली गई भेंटवार्ता और इनसे बातचीत कर रहे हैं

0: आपको प्रदीप का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान नरेश उरांव, जो ग्राम खनवा के निवासी हैं। और प्रखंड कौन सा पड़ता है नरेश जी आप लोगों का?
1: डाल्टनगंज।
0: प्रखंड डाल्टनगंज, जिला पलामू के निवासी हैं। नरेश जी से हम लोग आज जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन चीज की फसल लगाई है और आगे का क्या योजना है। तो नरेश जी, सबसे पहले किसानवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका नमस्कार। सबसे पहले यह बताएं कि अभी आपने कौन कौन सी फसल लगाई है?
1: अभी मक्का लगाए हैं, धान लगाए हैं, यही रहर तिल वगैरह लगाए हुए हैं।
0: रहर तिल वगैरह लगाए हुए हैं, धान के साथ साथ मक्का, अरहर, तिल लगाए हैं। तो ये जो चारों फसल लगाए हैं, चारों फसल में आज हम खासकर बात करेंगे आपसे मक्का और अरहर और तिल के बारे में। तो मक्का के बारे में यह बताएं नरेश जी कि मक्का आपने कितने क्षेत्रफल में लगाया है, एरिया कितना एरिया है?
1: ज़्यादा तो नहीं है, अभी 10 कट्ठा के लगभग में।
0: अच्छा, हाँ, 10 कट्ठा के एरिया में आपने लगाया है मक्का। तो मक्का का जो बीज है वह कहाँ से खरीदे थे?
1: हम लोग तो वसुंधरा से लेते हैं सर।
0: अच्छा, मतलब डाल्टनगंज से ही आप लोग बीज परचेज करते हैं वसुंधरा। कैसे किलो पड़ा था वो?
1: वो दिया था 100 रुपये किलो दिया था।
0: 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, मतलब एक किलो बीज में 10 कट्ठा में रोपा गया, एक किलो में?
1: नहीं नहीं, 2 किलो लगा था उसमें।
0: माने 2 किलो बीज में मतलब 10 कट्ठा रोपा गया। अच्छा, तो हाईब्रिड होगा
1: जी।
0: तो मक्का की जो खेती करते हैं नरेश जी, तो उसके लिए कितनी बार खेत की जुताई पहले माने करते हैं, कितनी बार?
1: पहले तो एक बार ऐसी जोता जाता है,
0: ऐसे ही एक बार जोतते हैं उसके बाद? अच्छा, उसके बाद जोत के छोड़ देते हैं घास उस मरने के लिए?
1: उसके बाद फिर जोत करके उसमें सेवता लगा करके वो करके पट्टा वट्टा मार देते हैं।
0: अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा जुताई करते हैं उसका, और उसके बाद तब बीज का छिड़काव करते हैं। तो मैंने बीज का छिड़क के लगाते हैं या लाइन से लाइन
1: में? लाइन बाई लाइन।
0: अच्छा, मतलब लाइन बाई लाइन लगाते हैं। तो आप हमें यह बताएं कि एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितना रखते हैं? एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी
1: यही 10 इंच के एवरेज में।
0: मैंने एवरेज 10 इंच
1: जी,
0: मतलब मोटा मोटी एक रफ आइडिया 10 इंच के लगभग में। एक मैंने पौधा से पौधा के बीच और लाइन से लाइन के बीच कितना रखते हैं?
1: लाइन के वही 9 इंच ही।
0: 9 इंच से 10 इंच, मैंने 9 इंच से 10 इंच यही एवरेज रहता है। एक बीता से थोड़ा सा अधिक में, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा ये घना हो रहा है?
1: घना नहीं लगता है? होता है, लेकिन घर के आदमी लोग जो ऐसे कुछ अपना अंदाजी लगा देता है।
0: देखिए नरेश जी, आप लोग चूंकि पुराने किसान हैं तो आप परंपरागत ढंग से आप लोग कृषि करते हैं, तो हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप नई तकनीक से, जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिकों की जो बताई हुई तकनीक है, अगर उस तकनीक का इस्तेमाल अगर आप खेतों में अगर करेंगे तो कम बीज भी लगेगा और बेहतर आपको उत्पादन भी मिलेगा। तो अच्छा ही बताइए नरेश जी कि सबसे अहम बात है कि जो मक्का लगाए हैं तो अभी जो मौसम चल रहा है मक्के के लिए अनुकूल है
1: जी? अभी तो ठीक है सर।
0: अभी ठीक है, तो मतलब अभी जो कल हल्की बारिश जो हुई तो मक्के के लिए फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ?
1: फायदा
0: हुआ। तो फायदा हुआ, तो लगभग यह फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है?
1: ये फसल तैयार हो जाती है 2 महीना के लगभग में।
0: 2 महीना के बाद ना? 2 महीना के बाद तैयार होती है, मतलब तीसरे महीने में तैयार होती है। तो खाने के लिए तो 2 महीना में, खाने का नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ मैंने जिससे अब पूरा जब पक जाए
1: तो 2-2.5 महीना में पूरा टूट जाता है।
0: अच्छा, 2.5 महीना में टूट जाएगा और 2 महीना में खाने के लायक हो जाएगा। बेचने के लिए आप मतलब मक्का जो अगर है बेचना है तो कहाँ बेचने जाते हैं?
1: मार्केट में ले जाते हैं, थोक में बेच दिया।
0: अच्छा, थोके में मैंने वहीं लोग ले लेता है, खेते में खरीद लेता है खरीदारी
1: लेज करके भी बेच देते हैं मार्केट में, और नहीं तो कोई आ जाता है तो खेत में भी दे देते।
0: अच्छा, मतलब दोनों कंडीशन है। तो पिछले साल क्या रेट मिला था, मक्का का भाव क्या था, इस साल क्या उम्मीद रखते हैं, पिछले साल क्या भाव था?
1: हरा मक्का जो है खाने लायक,
0: हाँ,
1: अभी तो मान लीजिए कि 10-12 यही चल रहा है।
0: 10-12,
1: हाँ
0: हाँ। अब अगर मक्का पक जाता है उसके बाद उसका क्या भाव होगा?
1: व्यापारी लोग उसको ले लेता है 11-12 रुपये किलो के,
0: मैंने 11-12 रुपये किलो के हिसाब से लोग ले लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मक्का में भी कीट वीट पतंग ये सब का प्रकोप होता है क्या?
1: हाँ, इसमें भी कुछ होता है? हल्का फुल्का होता है, उसमें कुछ दवा हुआ छिड़काव दे दिया जाता है।
0: अच्छा, अगर लगा अगर कुछ तो उसके लिए दवा का छिड़काव कर देते हैं। नरेश जी, यह आप जानेंगे कि आपने मक्का के बारे में तो बात कर दी, अब अरहर और तिल के बारे में भी थोड़ा आपसे जान लें। अरहर और तिल जो है कितना एरिया में आपने लगाया?

0: है?
1: अभी है 1 बीघा के लगभग में है, ज़्यादा नहीं किया।
0: 1 बीघा के लगभग में है, तो क्या मतलब मिश्रित है, दोनों एक साथ लगाए हैं कि अलग अलग लगाए
1: एक
0: हैं?
1: साथ है।
0: अच्छा, एक साथ लगाए हैं, मतलब मिश्रित खेती आपने किया है, बहुत अच्छी बात। तो 1 बीघा में कितना बीज लगा उसमें?
1: 1 बीघा में वही 20 किलो के लगभग डाले हैं।
0: अच्छा, 20 किलो दोनों मिला करके।
1: वो अलग से है, वो मतलब 20 किलो अरहर हुआ तो तीर उसी में हल्का डाल दिया जाता है।
0: अच्छा, उसी में खभरा मने
1: हाँ,
0: मिलावट कर देते हैं।
1: आगे छीट दिया जाता है तीर को, ओकर बाद
0: अच्छा, तो
1: रोपा
0: उसके लिए बीज जो घर का रखा हुआ बीज इस्तेमाल किया, या वो भी उसके लिए भी उन्नत तकनीक हाइब्रिड बीज
1: वो
0: लगाए?
1: तो घर ही का बीज रखते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: इसीलिए देखिए, घर का जो बीज होता है नरेश जी, वह ज़्यादा लगता है और उगता कम है, उसका जो जर्मिनेशन है वो कम उगता है, इसीलिए बीज अधिक लगता है। अगर आप उन्नत प्रजाति का, जिस तरह से आपने मकान में उन्नत प्रजाति का इस्तेमाल किया, और अगर आप अरहर के लिए भी अगर आप उन्नत बीज खरीदते, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 किलो बीज जो है 1 बीघा के लिए पर्याप्त होता, तो उसमें आपका पैसा बचता। क्योंकि 20 किलो अरहर, अभी अभी अरहर का भाव आप जान ही रहोगे, क्या भाव अभी चल रहा है अरहर का?
1: अभी वो अरहर का ऐसे रेट तो अभी नहीं पूछे हैं इधर, तो
0: अच्छा,
1: घर
0: इधर
1: का माल
0: पूछे नहीं
1: यही
0: है?
1: था
0: हाँ, घर
1: तो
0: का था, तो इसलिए आपने लगा दिया। अगर आप 20 किलो अगर आप छीट दिए, तो सोचिए, और ये आपको बीज भी को लगता है कि 200 रुपये किलो तक ये भी मिल जाता, और आपको 4 किलो से 5 किलो के बीच में आपका काम हो जाता। अच्छा, तिल तिल के का मात्रा कितना रखे थे उसमें?
1: तिल का मात्रा बहुत कम है, मतलब मोटा मोटी 2 या 3 किलो के एवरेज
0: दो
1: में।
0: या तीन किलो के एवरेज में है। तो
1: हाँ,
0: अच्छा, तो पहले पहले असल में 2-3 महीना में ये तिल भी तैयार हो जाएगा, और उसके बाद अरहर जो है वो बाग में
1: वो
0: बाद
1: तो
0: में
1: बाद
0: तैयार
1: में
0: बाद में तैयार होगा। मिश्रित भी खेती किए हैं, हालांकि पहले के किसान थे कि मिश्रित खेती कम करते थे, आप मिश्रित खेती कर रहे हैं, परंपरागत कृषि को छोड़ करके नया तकनीक अपना रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई। और हम यह चाहेंगे कि नरेश जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि वैज्ञानिकों का जो सलाह है उस पर अमल करें। रेडियो से भी आप रेडियो सुनते हैं?
1: रेडियो तो अभी नहीं सुनते हैं,
0: अभी नहीं सुन पा रहे हैं, काम का व्यस्तता है इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप रेडियो सुनेंगे तो किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाइयों को नित्य नई जानकारियाँ दी जाती हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। नरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अरहर तिल का अगर उत्पादन होगा तो उसको बेचने के लिए फिर बाजार ही जाएंगे, या घर से ही वो भी बिक जाएगा?
1: खाने पीने से बेसी होगा तो
0: बाजार
1: जाएगा।
0: जाएगा, और खाने पीने से अगर रहा तो घर में रह जाएगा। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

जी हाँ, श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सफल किसान उमेश उरांव से लिखी भेंटवार्ता, इनसे बातचीत कर रहे थे प्रदीप कुमार सिंह। और अब आइए सुनते हैं श्रोताओं गरमा मूंग की खेती में कीट प्रबंधन। जी हाँ श्रोताओं, गरमा मूंग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक दलहनी फसल है और इसकी जो खेती है रबी फसल के कटने के पश्चात गर्मी के मौसम में की जाती है। यह फसल कम समय में तैयार भी हो जाती है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी यह काफ़ी कारगर साबित होती है। मूंग की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कीट का उचित तरीके से प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। प्राय यह देखा गया है कि कीट जो हैं वो फसल को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ इसके उत्पादन को भी घटा देते हैं। तो इसलिए जरूरी हो जाता है श्रोताओं कि सही समय पर कीट की पहचान और उसको नियंत्रित कर फसल को सुरक्षित बचाए रखना। मूंग की खेती में श्रोताओं ये देखा गया है कि सफ़ेद मक्खी जो है मूंग की फसल को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। यह पौधों की पत्तियों का रस चूसती है जिससे कि पत्तियां जो है वह प्रायः पीली पड़ जाती है और पीला जो है वह मोज़ेक रोग बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसलिए इस रोग की या इस कीट की रोकथाम के लिए श्रोताओं रोग प्रतिरोधी किस्म का ही चयन करें और खेत को खर पतवार से हमेशा मुक्त रखें। पीले या चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करें और जरूरत पड़े श्रोताओं तो इमिका क्लोरोपिड 17.8 एसिल का छिड़काव करें। वही एक एफिड जिसे कि माहू कीट कहा जाता है, यह बहुत ही छोटे आकार का होता है और यह पौधों की कोमल पत्तियां और तनों से रस को चूसता है। जब इस माहू कीट का प्रकोप बढ़ जाता है श्रोताओं तो पौधे जो हैं वो प्रायः कमजोर हो जाते हैं और इनकी जो वृद्धि है वह रुक जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए श्रोताओं संतुलित उर्वरक का ही उपयोग करें, खेत में पानी का उचित प्रबंधन रखें, नीम आधारित कीटनाशक का छिड़काव करें और ज़्यादा यदि इसका प्रकोप हो तो थायामिथाकोसाम दवा का उपयोग करें। साथ ही साथ श्रोताओं फली छेदक कीट का भी प्रकोप देखा जाता है क्योंकि यह जो फली छेदक जो कीट होते हैं वो

के अंदर को दानों को खाते हैं, इससे उपज में भारी कमी हो जाती है श्रोताओं। इसलिए इसका है कि नियंत्रण करने का जो सही तरीका है श्रोता, तो सर्वप्रथम समय पर ही मूंग की खेती करें, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें और जो भी आपको प्रभावित फली नजर आए उसे नष्ट कर दें, और साथ ही साथ अगर हो सके तो स्पिनोडा सेम या का स्पिनोसेड का छिड़काव करें श्रोताओं। तो इस तरह से देखेंगे कि फली छेदक कीट का जो प्रकोप है वो प्रायः कम हो जाता है श्रोताओं। साथ ही साथ तना मक्खी रोग का भी प्रकोप होता है, और यह जो तना मक्खी जो कीट होते हैं श्रोताओं, ये तनों में सुरंग बनाकर उस पौधे के तनों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे सुरंग बनने के कारण जो है पौधे जो हैं वह सूखने लगते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम श्रोताओं बीजों को बीजोपचार कर ले, हमेशा फसल चक्र अपनाएं और समय समय पर खेत की निगरानी भी करें, क्लोरोपाइरीफॉस का हल्का सा छिड़काव करें श्रोताओं। साथ ही साथ श्रोताओं समेकित कीट प्रबंधन यानी कि IPM का उपयोग करें। गर्मा मूंग में ज़्यादातर रासायनिक दवा पर निर्भर रहना भी सही नहीं है, इसलिए समेकित कीट प्रबंधन अपनाएं, इसमें कम लागत में बेहतर परिणाम होते हैं। और IPM के बारे में हम आपको बता दें श्रोताओं कि इसके लिए जो मुख्य प्रबंधन की बात हम जब करते हैं तो सर्वप्रथम इसमें प्रमाणित और रोग मुक्त जो बीज का उपयोग करें, समय पर बुआई करें, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें, फसल चक्र को अपनाएं और जैविक कीटनाशक या फिर नीम के तेल का उपयोग करें श्रोताओं। साथ ही साथ कटाई से कुछ दिन पहले ही रासायनिक दवा का उपयोग भी बंद कर दे। तो जब हम IPM को अपनाते हैं श्रोताओं तो इसका कई तरीके से हमें लाभ प्राप्त होता है, फसल की उपज बढ़ती है, दानों की गुणवत्ता भी अच्छी हो जाती है और रोगों का प्रकोप भी कम हो जाता है। तो रोगों के प्रकोप को जब कम होते हैं श्रोताओं तो निश्चित रूप से उत्पादन जो है हमारी बढ़ जाती है, उत्पादन लागत भी कम हो जाती है, और इसका परिणाम स्वरूप हमारे जो भी किसान भाई हैं उनके मूंग की खेती में लाभ ही प्राप्त होते हैं। तो श्रोताओं यदि देखा जाए तो उचित कीट प्रबंधन करें हम, जिसमें कि सफ़ेद मक्खी माहू फली छेदक या जो भी कीट है जो गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका यदि हम प्रबंधन करें, समेकित देखभाल करें तो कम समय में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जैविक और रासायनिक उपायों का संतुलित उपयोग करें और फसल को सुरक्षित रखें, तभी हमारे किसान भाई इस गर्मा मूंग से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो श्रोताओं ये तो थी बातें खेतीबाड़ी की, और अब इसी के साथ इस खेतीबाड़ी से अब हमें दीजिए इजाज़त।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी, और अब आइए सुनते हैं कृषकों को संबोधित हमारा कार्यक्रम ग्रामीण सभा। तो आज के ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का पुनः कल्याण कुमार का नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, आज के इस ग्रामीण सभा के तहत चर्चा में आप जानेंगे पशुओं के लिए आहार व्यवस्था। आज की बात का विषय है अंतर्वर्ती खेती के लाभ, और इसी कार्यक्रम में कड़ी में हम आपको सुनाएंगे अनुकरण तरीके से ली गई भेंटवार्ता। विषय है किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। साथ ही साथ आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आइए जानते हैं पशुओं के लिए आहार व्यवस्था। जी हाँ श्रोताओं, कृषि के एक महत्वपूर्ण पार्ट में, महत्वपूर्ण भाग में पशु का भी एक विशेष योगदान है, और पशुपालन हमारे कृषि का एक बहुत ही अभिन्न भाग भी माना जाता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या जो भी पशु है जिनसे कि हमें दूध, मांस, ऊन, खाद्य की प्राप्ति होती है, तो इनके लिए उचित आहार की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है, तभी हम उनसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संतुलित आहार, जिससे कि पशु जो है वो स्वस्थ रह सके, उनकी वृद्धि हो सके और उनकी उत्पादन क्षमता में लगातार सुधार हो। पशु को यदि उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, लेकिन जब वो कम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी उत्पादन क्षमता श्रोताओं कम हो जाती है, और कई प्रकार के रोग जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। श्रोताओं, पशु आहार का जो महत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पशु के दिए जा रहे आहार से ही पशु को ऊर्जा प्राप्त होता है, शरीर की वृद्धि और विकास

संभव है। इसी से इस आहार से ही दूध का उत्पादन बढ़ता है, पशुओं को रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होती है और प्रजनन क्षमता में भी श्रोताओं देखा जाए तो सुधार होता है। और जब संतुलित पशु को पशु आहार मिलता है तभी जो है उनके शरीर जो है स्वस्थ

कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी का होना एक संतुलित आहार कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट श्रोताओं, जो कि हमारे पशुओं को ऊर्जा प्राप्त होता है और इसी से जो कि हरा चारा, भूसा, मक्का, जो जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में पाया जाता है। इसके लाभ की बात करें श्रोताओं, तो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, पशु सक्रिय रहते हैं, दूध के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। प्रोटीन की हम बात करें श्रोताओं, तो प्रोटीन जो है वो शरीर के निर्माण तथा वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। दालों का चारा, सरसों की खल्ली, सोयाबीन खल्ली या चने में प्रोटीन, जो कि इसमें चने में जो प्रोटीन जो ज़्यादा पाया जाता है, और जब इन पशुओं को हम देते हैं तो इसी से इनकी शरीर की वृद्धि होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है और दूध का उत्पादन बढ़ता है। श्रोताओं, वसा की हम बात करते हैं, तो वसा जो है मुख्य रूप से तेल और खल्ली में पाई जाती है। इसके लाभ की हम बात करें श्रोताओं, तो इससे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि पशु जो है स्वस्थ और चमकदार दिखाई पड़ते हैं। खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे तत्व शामिल होते हैं। इससे हड्डियां जो है वो मजबूत होती है, दांत स्वस्थ रहते हैं, प्रजनन की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। और विटामिन की हम बात करते हैं श्रोताओं, तो विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोगों से सुरक्षा इसी विटामिन के द्वारा प्राप्त होती है। श्रोताओं, शरीर का विकास भी सही ढंग से होता है। तो विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से अगर रोग नहीं लगेंगे तो हमारा शरीर या जो भी पशु के शरीर है वह स्वस्थ रहेंगे। पानी हर एक जीव के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, चाहे वह पशु हो चाहे वह मनुष्य हो। तो पशु को भी हमेशा प्रतिदिन स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पानी दें, क्योंकि पानी की सही मात्रा रहने से ही उनकी पाचन जो क्रिया है वह सही होती है, शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है और दूध की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए श्रोताओं, पशु के आहार की हमें बात करनी होगी। तो पशु के आहार में सर्वप्रथम हरा चारा, और हरे चारे में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व रहते हैं, और इसमें बरसीम, नेपियर, घास, ज्वार, बाजरा या मक्के जो है वो पशु के प्रमुख आहार के स्रोत माने जा सकते हैं, और इसी से इनके पाचन में भी सहायता होती है, दूध के उत्पादन की भी वृद्धि होती है और विटामिन की भी पूर्ति हो जाती है। जबकि जब सूखे चारे की हम बात करते हैं, तो भूसा, सूखी घास या पुआल सूखे चारे के सूखे आहार के रूप में जाने जाते हैं। इससे पाचन क्रिया संतुलित रहती है, साथ ही साथ पशु का पेट भी भरा रहता है, और इससे इनकी जो पाचन की क्रिया है वो भी काफ़ी बेहतर बनी रहती है श्रोताओं। और जब हम खनिज लवण यानी दाना मिश्रण की बात करते हैं, तो मक्का का चोकर, खल्ली जो है वो इसमें खनिज मिश्रण पाए जाते हैं, जो कि इन्हें ऊर्जा और प्रोटीन की पूर्ति में सहायक साबित होते हैं। इसी से अधिक दूध की भी प्राप्ति होती है, तो दाना मिश्रण भी काफ़ी जरूरी तत्व माना जाता है श्रोताओं। यदि हम समान रूप से अगर हम बात करें गाय और भैंस के लिए, तो इन्हें 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा, 5 से 6 किलोग्राम सूखा चारा और 4 से 5 किलोग्राम दाना मिश्रण के साथ साथ पर्याप्त पानी एक संतुलित आहार के रूप में समझा जा सकता है श्रोताओं। वहीं बकरी के लिए भी पतिया या हरा चारा के साथ साथ दाना दिया जा सकता है। भेड़ को चरागाह में या चराना में अगर चलाते हैं तो भी काफ़ी लाभदायक है। और बात आती है कि पशु को आहार देने के लिए, तो इनके लिए भी समय का निर्धारण होना जरूरी है श्रोताओं। निश्चित समय पर भोजन दें, स्वच्छ बर्तनों का ही उपयोग करें, फफूंदी लगा हुआ चारा बिल्कुल न दें, यानी किसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि सूखा चारा या भींगा चारा किसी भी तरीके से अगर उसमें रोग हैं या किसी प्रकार से आपको नुकसान लगते हैं, तो उसे बिल्कुल ही अपने पशु को न दें। आहार को धीरे धीरे बदलें, पशुओं को प्रतिदिन स्वच्छ पानी दें, साफ पानी दें श्रोताओं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी दें और हरा चारा भी ज़्यादा दें, खनिज मिश्रण और नमक भी दें, क्योंकि गर्मी के मौसम में इन्हें इन तत्वों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। वहीं सर्दी के मौसम में ऊर्जायुक्त जो है वो आहार दे, सूखा चारा ज़्यादा दे और पशु को ठंड से बचाएं। संतुलित संतुलित यदि आहार की हम लाभ के बारे में बात करें श्रोताओं, तो इससे कि दूध के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है,

0: पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, पशु स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं, प्रजनन की क्षमता भी बढ़ती है और पशुपालन की आय में भी वृद्धि होती है। सतो पशु को खराब या सड़ा हुआ चारा बिल्कुल न दे, इन बातों का सावधानी में रखना होगा, सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। जहरीले पौधों से इन्हें बचाए, संतुलित मात्रा में ही दे और उम्र के और उत्पादन के अनुसार ही आहार दे। सोताओ तो देखा जा सोताओ, यदि हम उनके लिए उचित आहार की व्यवस्था करते हैं, संतुलित आहार यदि देते हैं तो पशु की वृद्धि, उनका स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता काफ़ी बेहतर हो जाती है। हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खनिज लवण के साथ साथ स्वच्छ पानी का उचित प्रबंधन जब होता है तो निश्चित रूप से हमें अपने पशु से ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। और वहीं यदि पशु को सही समय पर पौष्टिक भोजन दिया जाए तो दूध के उत्पादन तो बढ़ते ही हैं श्रोताओं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। कहने का तात्पर्य है रोग भी इन पशुओं में नहीं लगते हैं। तो जब ये सारी बातें हो जाती है तो निश्चित रूप से पशु के व्यापार से, पशुपालन से इससे काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, पशुओं के लिए आहार व्यवस्था अत्यंत ही जरूरी है। जिस तरीके से हम अपने आहार की व्यवस्था करते हैं उसी प्रकार से पशु के लिए भी संतुलित आहार का प्रबंधन मौसम अनुसार जरूरी है। तो श्रोताओं, अब इसी चर्चा के साथ आइए अब आपको हम सुनवाते हैं जिला अग्रणी बैंक के अनुकरण तरीके से ली गई भेंटवार्ता। विषय है किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक श्री अनुकरण तिर्की जी, जिनसे आज विस्तृत बातें होंगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, जो हमारे किसान भाइयों के लिए वास्तव में एक महत्वाकांक्षी योजना है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये किसान क्रेडिट कार्ड है?
2: ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी ऋण योजना है जो हमारे किसान भाइयों के लिए प्रोवाइड किया गया है, जो हमारे नाबार्ड जो है उसके द्वारा ये फॉर्मुलेट किया गया है, बनाया गया है, हमारे किसान भाइयों के लिए ही बनाया गया है। उनको सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना जो है तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा।
1: कब ये लागू किया गया था सर?
2: ये इसका शुभारंभ अगस्त 2098 से ये किया गया है।
1: अच्छा, अब तब से अब तक धरातल पर?
2: हाँ जी,
1: मतलब कि हमारे किसान भाई लोग इसका बहुत अधिक मात्रा में लाभ ले रहे हैं।
2: जी
1: जी। इसका मूल उद्देश्य क्या है, किन किन वर्ग के लोगों तक इसे पहुंचाना?
2: ये हमारे किसान भाई जो देहात में रहते हैं, सुदूर जंगल इलाके में रहते हैं
1: जी,
2: और उन्हें बैंकिंग सुविधा नहीं है, उन सबों को जो है ये सेठ साहूकार से लोन लेके वो लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपना काम चलाते हैं। तो एक उनसे छुटकारा के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उसके साथ में ही ये किसान भाइयों के खेती बाड़ी के लिए में पैसे की उपयोग होती है, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये बैंक के द्वारा सबसे सस्ती लोन उन लोगों को दिया जा रहा है।
1: तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान, उन्हें किस तरह से लेने के लिए आगे आना होगा इस योजना का लाभ?
2: इसको लेने के लिए किसान भाइयों को, इसमें तो अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, इसलिए दो प्लेटफॉर्म है। एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में है कि जिस बैंक से उनका ताल्लुकात है, जहाँ से वो लोन लेना चाहते हैं, तो वे वहाँ से वेबसाइट पर जाके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। या तो फिर दोबारा दूसरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म कि पीएम किसान योजना का जो मतलब एक वेबसाइट है pmkisan.gov.in, वहाँ से भी ये एक पेज का एक फॉर्मेट होता है, वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। या तो फिर बैंक में डायरेक्ट वो जाके जो कृषि पदाधिकारी हैं वहाँ के, उससे वो बात कर सकते हैं।
1: तो इसके लिए कौन कौन से बैंक जिम्मेवार हैं जो इन योजनाओं का लाभ मतलब किसान भाइयों को दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं?
2: तो इसमें है कि पहले वो फोटो दो ठो चाहिए उनके लिए, जो जरूरत है उस फॉर्म में लगाने के लिए। इसके साथ में KYC है, KYC यानी मतलब नो योर कस्टमर। उसमें दो चीज है, एक तो है कि उनके पहचान, और दूसरा है कि एक उसका एड्रेस का प्रूफ चाहिए उसमें। ये दो चीज KYC में जरूरत हम लोग का होता है। और इसके साथ में ही वे अपने साथ में जमीन के कागजात का कुछ दस्तावेज उनको बैंक को चाहिए कि भाई उसके पास कितना जमीन है, इसका दस्तावेज उनके साथ में उनको आना पड़ेगा। और आगे है कि जैसे मान लीजिए उनका लोन 1 लाख के अंदर है, तब तो फिर वो मैंने रसीद का कुछ भी दस्तावेज देंगे हो जाएगा, लेकिन 1 लाख से

0: ऊपर 1.60 तक का, 1 लाख से ऊपर में उसका जमीन का पोजीशन सर्टिफिकेट चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो मैंने ब्लॉक से बनता है वो पोजीशन सर्टिफिकेट चाहिए, और 1,60,000 से ऊपर उसमें कोलेट्रल भी लगता है, मैंने उसके लिए कुछ बंधक रखने की आवश्यकता होती है।
1: तो इसमें कितनी भूमि वाले जो किसान हैं वो जुट सकते हैं?
0: इसमें कोई मिनिमम निर्धारित नहीं है कि कितना जमीन होना चाहिए, लेकिन खेती लायक कुछ जमीन होना चाहिए जहाँ पर जिसको जिस पे बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर सकती है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये जमीन आधारित ये ऋण है और उसी जमीन के माप पर उसका कितना जमीन है उसी के आधार पर इसका जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया जाता है।
1: मतलब कि उपजाऊ भूमि होनी चाहिए,
0: उपजाऊ भूमि होना चाहिए, उसमें खेती होना चाहिए।
1: कितने अधिक तक इन लोगों को ऋण दे पाते हैं?
0: वैसे हम लोग 3 लाख तक का ही लोन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन लेने से कोलेट्रल की जरूरत होती है जो हमारे किसान भाई प्रोवाइड बैंक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि 3 लाख के अंदर ही उनको लोन दिया जाए। और 3 लाख के अंदर में देने से बहुत तरह की बैंक का उसमें सरकार की छूट भी है, सूद में छूट है और उसमें कुछ सबवेंशन वगैरह भी सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये सब 3 लाख के अंदर में है। तो 3 लाख बैंक अगर बैंक से किस लेते हैं सब, हाँ, तो बहुत बेनिफिशियल है, वो सब लाभदायक है।
1: विशेषकर ये किन किन फसलों की खेती के लिए दी जाती होगी?
0: इसमें बहुत सारे फसल हैं हमारे, जैसे धान के लिए है, गेहूं के लिए है, मक्का के लिए है, और सब्जी में हो गया आलू, प्याज, टमाटर, फूलगोभी, बैंगन, भिंडी, जो भी है सब्जी में। दलहन में आपका मटर है, चना, उड़द, मूंग है, अरहर है, तूर है, और तिलहन में मूंगफली है, सोयाबीन है, सरसों है, ये सब के लिए के दिया जाता है। इसमें निर्धारण के लिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला के लेवल पर एक टेक्निकल कमिटी होती है जो ये निर्धारित करती है कि भाई किस फसल के लिए कितना हम लोग उसको लोन दे सकते हैं।
1: अच्छा, ये मवेशी वगैरह की अगर हम बातें करें तो?
0: हाँ, इसमें अभी सरकार के द्वारा जो है 2 साल के अंदर में इसमें मछली पालन और ये पशुपालन के क्षेत्र में भी केसीसी का, हाँ, इसको जोड़ा गया है अभी नया,
1: मैंने इसको विस्तार कर
0: विस्तार किया गया है केसीसी का।
1: तो इसमें जैसे दुधारू मवेशी में बकरी पालन हो गया या सुअर पालन, सुकर पालन या फिर मुर्गी वगैरह का भी
0: जी
1: लोग मांग कर सकते हैं?
0: हाँ, मांग कर सकते हैं। इसमें अभी जैसे हम लोग का है कि दोनों में हम लोग का काम चल रहा है, टास्क फोर्स का हम लोग का एक कमिटी तैयार किया गया है डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ये आवेदन फिशरी और ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए पशुपालन के लिए आवेदन आते हैं। हाँ, तो ये भी मैंने एक किसान क्रेडिट कार्ड है, मैंने वर्किंग कैपिटल है, ये मैंने पशु खरीदने के लिए हम लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन पशु में पालन में जो भी जरूरत होती है, मान लीजिए उनके दाना पानी हो गया, हाँ, दवाई हो गया, इंश्योरेंस हो गया,
1: हाँ,
0: इस तरह की जो भी जरूरतें हैं रख रखाव के लिए, उनके लिए भी हम लोग उनके लिए मैंने कार्यशील पूंजी हम लोग उपलब्ध कराते हैं किसान भाइयों।
1: ये एक नया इसमें लागू,
0: हाँ, नया एक लागू किया गया है और जो चल रहा है सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें
1: इसे कैसे हमारे किसान भाई को अदा किया जाता है और उनसे किस तरह से रकम की वापसी ली जाती है और उस पर ब्याज दर क्या होते हैं?
0: सूद में इसमें बहुत सारे छूट दिए हुए हैं और बहुत ये सस्ता लोन है। हम तो कहेंगे कि जितने भी लोन की योजनाएं हैं उसमें सबसे लाभदायक और सबसे सस्ता लोन केसीसी ही है। इसमें है कि 2% जो है यह सरकार की तरफ से इसमें जो सूद है वहन किया जाता है, इसलिए बैंक जो है इस पे सिर्फ 7% का ही सूद लगाती है। और इसमें एक फायदा और है कि मान लीजिए किसान अपना फसल उगाती है और उसको जब समय पर इसको वापिस करती है तो इसमें जो है सरकार के द्वारा 3% का और इसमें लाभ दिया जाता है
1: उनके क्रेडिट,
0: हाँ, उनके क्रेडिट पर, जिसको हम लोग बैंक की भाषा में इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं। यानी किसान भाइयों को सिर्फ 4% पर ही उनको सूद लिया जा रहा है, 4% का। और इसमें अभी तो बहुत सारे स्टेट हैं कि जहाँ 4% के अलावा भी सरकार, राज्य सरकार जो है अपने तरफ से भी इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, तो ये झारखंड में भी इस तरह का बात हो रही है, चल रही है, तो हम आगे समय में ये 3% का लाभ और मिलेगा, यानी हमको 1% ही सूद देना पड़ेगा। और इससे अच्छा मैंने लोन क्या हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: जबकि हम 4% या 1% का पर हम आपको लोन दे रहे हैं, तो इससे सस्ता और कुछ हो नहीं सकता है। इसके साथ में इसमें फसल बीमा का कवरेज भी है, जब हमारे यहाँ ओलावृष्टि से,
1: हाँ, किसी आपदा
0: या किसी आपदावश जो फसल बर्बाद होती है तो ये फसल का जो है बीमा सरकार करती है, इसमें सरकार भी करती है, बैंक के द्वारा भी होती है। लेकिन अभी तत्काल में ये बीमा जो है किसी कारणवश थोड़ा सा बंद हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि झारखंड सरकार के द्वारा ये फसल राहत बीमा एक योजना, एक नई योजना चलाने का विचार हो रहा है, तो फिर ये हमारे किसान भाई

0: लाभान्वित इसमें होंगे। इसके साथ में इसमें दुर्घटना बीमा भी कवरेज रहता है और इसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम रहता है। जैसे मान ली एक साल के लिए 15 रुपया है और 3 साल के लिए 45 रुपया, तो इसमें है कि ज्यादा किसान भाइयों से बहुत कम लिया जाता है। मान ली 3 साल का बीमा है तो किसान भाई से हम 15 रुपया ले रहे हैं तो 20 रुपया हम बैंक उसमें भी लगाते हैं उसमें।
1: अच्छा।
0: बाकी प्रीमियम जो बैंक लगाती है, मान लीजिए किसान भाई किसी कारण उसे मैंने कुछ हो जाता है उनको तो 50,000 का उन लोग को जीवन बीमा भी मिलती है। तो मान लिया 50,000 मिल रहा है तो उनका लोन भी कम हो जाएगा। मान लिया 50,000 का लोन लिया है तो 50,000 उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर उनको बहुत कम ही पैसा अदा करना पड़ सकता है
1: जी।
0: तो इस तरह से बहुत ही लाभदायक है। और मान लीजिए एक और भी लाभ है जो हमने नहीं बताया है, कोई फसल है उस एरिया में टाई अप है, मान लिया कवरेज आपका जो मोर्गेज हम जो लेते हैं 1,60,000 के ऊपर में, लेकिन किसी कंपनी के साथ अगर कोई फसल का टाई अप है उस पे ये अगर किसान फसल उगाते हैं तो ये मतलब मोर्गेज का जो सीमा रहता है जो मैंने कोलेट्रल जो है वो 3 लाख तक चला जाता है इस तरह से।
1: और कोई बातें जो छूट गई हो इससे संबंधित?
0: इससे संबंधित और इसमें क्या इसमें कहना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड हम अगर कहना चाहें तो किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छी लोन है सरकार के लिए, सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है ये, तो किसान भाई भी को भी इसमें सजग रहना चाहिए। और इसमें हम एक चीज और बोलना चाहेंगे उन लोगों को कि अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वे समय पर अवश्य उसको चुकाएं, ताकि उन लोग को जो है 3% का जो फायदा और मिलने वाला है
1: वो
0: तो वो प्राप्त कर सकते हैं उसमें।
1: और शाख भी बना
0: हाँ, और बैंक के साथ में शाख भी बना हुआ रहेगा। और इसीलिए कि भाई मान लिये अगर वो लेके अगर पैसा नहीं चुकाते हैं तो वो डिफॉल्टर बैंक के नजर में हो जाते हैं। कुछ लेना हुआ उसके परिवार में, किसी को लोन लेना हुआ तो वे बाधा उत्पन्न हो जाती है इसमें, और बैंक जो है जान चाहकर भी वो आगे लोन और नहीं दे पाती।
1: ससमय भुगतान करना आवश्यक है,
0: इसलिए इसको जो ससमय भुगतान करना आवश्यक है। और इसमें एक फायदा हम बताते हैं, अभी जो कृषि ऋण माफी योजना जो सरकार झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना जो चल रही थी, इसमें उन्हीं लोनी को ये लाभ दिया गया जिसका खाता जो था स्टैंडर्ड था सही तरीके से चल रहा था, उन्हीं को ये लाभ दिया गया है, लेकिन जो डिफॉल्टर हो गए उनको ये लाभ नहीं मिल पाया है।
1: इसलिए आवश्यकता है अपने शाख को बनाए रखने की और योजना का भरपूर लाभ लेने की। जी, आप थे जिला अग्रणी बैंक पलामू के प्रबंधक श्री अनुकरण तिर्के जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े सर, और किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित विस्तृत जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुकरण तिर्के से ली गई भेंटवार्ता, विषय था किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब श्रोताओं आइए जानते हैं अंतर्वर्ती खेती के लाभ। जी हाँ श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी कृषि प्रणाली है, पद्धति है, जिसमें एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती का होना। इस सिस्टम के द्वारा किसान भाई को बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब आप दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना चाहते हैं तो फसलों का चयन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे फसल का चयन करना है जो एक दूसरे के विकास में सहायक हो, उसी अनुरूप आपकी जमीन, आपकी खेत की जमीन हो, पानी की व्यवस्था हो और मिट्टी में वो सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता हो। अंतर्वर्ती खेती का सबसे बड़ा लाभ ये होता है श्रोताओं, क्योंकि भूमि का पूरा उपयोग हो जाता है, खेत की खाली जगह भी उपयोग में आ जाती है, इससे उत्पादन बढ़ता है। वहीं यदि एक फसल खराब भी हो जाए तो दूसरे फसल से किसान भाई को उसका लाभ मिल जाता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए श्रोताओं तो खेती से किसान भाई को जोखिम प्रायः कम होता है। दलहनी फसल को अन्य फसलों के साथ उगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, क्योंकि दलहनी फसल जो है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में जमा करते हैं, इससे रासायनिक उर्वरकों की जो आवश्यकता है वो प्रायः कम हो जाती है। अंतर्वर्ती खेती में मिट्टी के कटाव भी कम हो जाते हैं और भूमि को नमी बनाए रखने में ये काफ़ी सहायक साबित होते हैं। इसमें कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। अलग अलग फसल बोने के होने के कारण श्रोताओं कीट भी तेजी से नहीं फैलते हैं, इससे कीटनाशकों का उपयोग भी प्रायः कम करना पड़ता है, साथ ही साथ पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाता है। खेत में खरपतवार भी कम उगते।

क्योंकि यह फसल जो है भूमि को ढके रहती है। अंतर्वर्ती खेती में पानी का भी उचित उपयोग हो जाता है। विभिन्न फसलों की जड़ें अलग अलग गहराई तक जाती है, जिससे मिट्टी में उपलब्धता पानी और पोषक तत्वों का पूरा उपयोग हो जाता है। इससे सूखे की स्थिति में भी फसल को बहुत हद तक सुरक्षा मिल जाती है। अंतर्वर्ती खेती जो श्रोताओं किसान भाइयों के लिए आय बढ़ाने में यह काफ़ी सहयोग करती है, क्योंकि एक ही खेत से कई प्रकार की जो उपज है वो प्राप्त होती है। पशुओं के लिए चारा की भी उपलब्धता बढ़ जाती है। तो श्रोताओं, यदि देखा जाए तो अंतर्वर्ती खेती काफ़ी उपयोगी और लाभकारी कृषि प्रणाली है। इससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। श्रोताओं, तो निश्चित रूप से श्रोताओं, यदि कृषि के क्षेत्र से कृषि से लाभ लेने के लिए नई नई बातों को जानना जरूरी हो जाता है, और अगर आप जब वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं, वैज्ञानिक बातों को सीखते हैं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण लेते हैं, तो निश्चित रूप से कृषि से ही आपको काफ़ी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। और यह आर्थिक लाभ चूँकि आप कृषि के क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से यह काफ़ी टिकाऊ और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होता है, और देश के विकास में भी आपका सहयोग प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, यदि आपके पास जमीन है, आप खेती करते हैं, तो अंतर्वर्ती खेती के बारे में सोचें। वैसे फसल का चयन करें जो आपके खेत की मिट्टी, वायुमंडल के अनुकूल हो, एक दूसरे के विरोध में ना हो, कि एक दूसरे के सहायता करने वाले फसल हो। वैसे फसलों का चयन करें और अपने खेत से भरपूर लाभ प्राप्त करें श्रोताओं। और अब श्रोताओं, चलते चलते हम आपको बता दें डाल्टनगंज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 45 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता का प्रतिशत 11 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं, अब इसी के साथ आज की इस ग्रामीण सभा में दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: का स्वागत है। इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाई फाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
8: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर रखना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
8: तेरी वाइफा है ना,
9: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नव नियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, दो चार महीनों में होंगी हजारों बहालियां। जेटेट भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी मौजूद रहे।
1: अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाएं इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ओस्लो में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मान है, जो विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदायों में बदला जाएगा, ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके।
2: सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है

0: साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले।
1: जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक संपन्न हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तथा तथ्य तलब किए गए हैं।
2: कई तथ्यों कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। समिति अधिकृत किया है आदरणीय चेयरमैन साहब को। इसके जल्द ही हमको लगता है कि फिर फ्राइडे या सैटरडे को बैठक होगा, उसका फिर आगे की रिपोर्ट।
1: भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने से उपजे इस विवाद पर अगली बैठक अब 22 मई को होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय भाषा कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और 5वें से 7वें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 73% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष मतदाताओं की सूची 23 मई से सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी, जहाँ लोग बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में कच्चे तेल और एलपीजी के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश की रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: गुड्डा जिले को आज स्वच्छ ईंधन की बड़ी सौगात मिली है। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने गुड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर सीएनजी पीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का लाइव संदेश भी सुनाया गया। सांसद ने कहा कि सीएनजी से प्रदूषण घटेगा और स्थानीय वाहन चालकों को किफायती ईंधन का विकल्प मिलेगा। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी के साथ यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि जेल में बंद एक महिला कैदी का कथित यौन शोषण के बाद गुप्त रूप से गर्भपात कराया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
4: रांची के बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, उसके साथ कई महीनों पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई, केवल जेल सुपरिटेंडेंट वहां संक्षेप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जेल आईजी सुदर्शन मंडल जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया।

0: सबूत को मिटाया।
1: रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है।
2: बिना कोई जानकारी बाबूलाल जी पत्र लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं एक्स पे। जानकारी रखा कीजिए, आप इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप जो बोलते हैं वो राज्य की जनता सुनती है। इस मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है और जब मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है तो उसके बाद आप हाथी पीट रहे हैं।
1: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पलमा गुमला खंड के आंजनधाम टोल प्लाजा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्रीय अधिकारी MT अतरदे ने कल्पतरु का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। NHAI ने कहा कि ग्रीन हाईवे अवधारणा के तहत राजमार्गों के किनारे हरित आवरण बढ़ाने के लिए निरंतर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची, खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी व मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रांची की राशि सिन्हा ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित चौथे एशिया केक ऑस्कर वर्ल्ड एडिशन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्हें व्हिप्ड क्रीम वेडिंग केक श्रेणी में उत्कृष्ट कला और क्रिएटिविटी के लिए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे वाली कस्टमाइज केक बनाने के बाद वे देश विदेश में सुर्खियों में आई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नवनियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, 2-4 महीनों में होंगी हजारों बहालियां। JTET भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का सशक्त अनुसरण, स्थल निरीक्षण एवं जांच वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस दौरान जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति, प्रगति, खामियां, समन्वय का अभाव आदि बिंदुओं का आकलन कर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। यह अभियान 16 मई से 24 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार को चलाया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त आलोक कुमार ने निरीक्षण के दौरान कहा कि
2: बेसिकली निरीक्षण का जो मेन पर्पस यही है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके देखें क्या क्या पब्लिक को समस्याएं फेस हो रही हैं, उसको निराकरण कैसे करना है, और एक एविडेंस बेस्ड हम लोग प्लानिंग और एविडेंस बेस्ड जो एग्जीक्यूशन है किसी भी योजना का वो कैसे किया जा सकता है, उसी के लिए हम लोगों ने बाकायदा शेड्यूल निकाला हुआ है। हर शनिवार हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे सहायक पदाधिकारी के साथ हर एक पंचायत का निरीक्षण करेंगे और उस क्रम में जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम लोग कैसे टेकअप करने वाले हैं, इसी के लिए हम लोगों ने पूरा प्लान अगले 3-4 महीने चलेगा।
1: जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों में जिला प्रशासन एवं बैंकों की पहल पर चरणबद्ध कृषि ऋण सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सरकार की किसान हितैषी योजना

0: योजनाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक बालादित्य कुमार ने बताया कि
1: किसान इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और वो कैंपेन के माध्यम से उनको जो भी केसीसी रिलेटेड लोन है उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, उनको ऋण प्रदान किया जा रहा है जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसान बंधु जो भी कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आ रहे हैं तो कृषि से संबंधित सारी जानकारी उनको प्रदान की जा रही है हमारे बैंक मित्रों द्वारा और सरकारी कृषि अधिकारी द्वारा।
0: बिजली पानी सहित अन्य जन सुविधाओं की मांग को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 12 मई को समाहरणालय के समक्ष धरना एवं जोरदार प्रदर्शन किया। इस क्रम में भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जन सुविधाओं एवं समस्याओं को लेकर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि
2: मेन मूल्य हमारा डिमांड है पानी दो बिजली दो। उसी क्रम में आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने देखा कि जब वहां गई महिलाएं मिलने के लिए तो गेट बंद कर दिया गया और आक्रोशित महिलाओं ने वहीं पे खाली घड़े को उनके गेट के पास छोड़ दिया, तोड़ दिया।
0: जामताड़ा जिले में साइबर अपराध पर विराम लगाने को लेकर जामताड़ा पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कहा कि
3: मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा कल छापेमारी की गई नारायणपुर थाना अंतर्गत दखनी डीह के पास, जहां से 3 संदिग्धों को पाया गया। कुल 8 मोबाइल जब्त हुआ है। जब उसका सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि उसमें ये लोग इनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में फोन करके साइबर ठगी की कार्रवाई की जा रही है।
0: जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों के द्वारा भी आवश्यक पहल की जा रही है। लोगों को जनगणना के महत्व के प्रति जागरूक एवं पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
4: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल आकाशवाणी रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:16 हो चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बुनियाद। नमस्कार, कैसे हैं? बुनियाद कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आ गया आप सबों के घर आंगन में। अभी तक फोन कॉल आ रहे हैं, हमने बातें ही ऐसी की थी कि फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। बीएड की बातें की थी और बीएड इंटीग्रेटेड स्पेशल बीएड की बातें की थी, जो 4 साल का कोर्स होता है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। आज उसके अगले हिस्से को हम लेकर आए हैं। ढेर सारे सवाल आए हैं, जिसमें एक सवाल ये कॉमन है कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके बारे में फिर से एक बार बता दिया जाए। जरूर बताएंगे, ये कार्यक्रम है आपके लिए, हम तो सिर्फ एक माध्यम है जानकारियां पहुंचाने के लिए। थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि जिन्होंने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फोन कॉल्स आते हैं, और उससे भी अच्छा लगता है जब आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं देखने के लिए। एक आध बार मुलाकात हो गई है कुछ लोगों से हमारी भी, भला आप

0: राजेश जी हैं। हमने कहा जी अच्छा लगता है सर, थैंक यू। तो अब थैंक यू, आभार, अभिनंदन आपका करना चाहते हैं कि आप हम पर इतना विश्वास करते हैं। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई की बातें हम लगातार कर रहे हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपने पैरामेडिकल की पढ़ाई की तो पैरामेडिकल के अंदर में टेक्नीशियन हो सकते हैं, ओटी असिस्टेंट हो सकते हैं, आप रेडियोलॉजी में जा सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, एएनएम और जीएनएम बन सकते हैं, आप फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा या फार्म डी कर सकते हैं, या जर्नलिज्म में जा सकते हैं, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, बीबीए मैनेजमेंट के साथ लॉ, बीए के साथ लॉ, बीएससी के साथ लॉ, अगर आप 3 साल वाला भी लॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म कर सकते हैं, लाइब्रेरी में किताबों से आपको बहुत प्यार है तो किताब के रख रखाव के लिए एक पढ़ाई होती है लाइब्रेरी साइंस, आप उसमें जा सकते हैं। ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर अवनीश रंजन से, जो पुनर्वास विभाग में डीन है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, और हम स्पेशल की बात करते हैं, चैलेंज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नंबर बताए देते हैं, नंबर नोट कर लें, नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005। और दूसरे कोर्स के बारे में भी, या यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में अगर आप जानकारियां चाहते हैं तो www.gnsu.ac.in ये वेबसाइट का पता है, आप यहां जा सकते हैं। बहरहाल हाँ, एक जानकारी और ये है कि अगर पैसे की समस्या है ना, तो 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो बिहार सरकार देती है, इससे भी बहुत सारे कोर्स किए जा सकते हैं। आप पता लगाइए और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आ जाइए, या ये जो नंबर है 9431899002 या 1800121051 पर पूछ लीजिए। बहरहाल डॉक्टर अवनीश रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़े में।
1: मैं डॉक्टर अवनीश रंजन और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के डीन के पोस्ट पे हूँ, और हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 कोर्सेज अभी संचालित हो रहे हैं इस फैकल्टी से, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन हैं, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता, ये 2 में हमारे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 4 साल वाले चल रहे हैं।
0: चलिए, एक सवाल जो आपने पिछले सप्ताह बताया था उसमें एक बार फिर से ये बताने की बात कही गई है कि जो प्लेन बीएड 2 साल का ग्रेजुएशन के बाद होता था, और जो इंटीग्रेटेड बीएड है जो इंटर के बाद 4 साल का होता है, और जो स्पेशल शब्द जुड़ा है जिसमें, उसके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, फिर बातों को हम आगे बढ़ाएं।
1: बीएड का ये मतलब है कि बच्चे तभी एडमिशन लेते हैं जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब 3 साल के कोर्सेज हैं। कई बार यूनिवर्सिटी लेट होने के कारण, एग्जामिनेशन लेट होने के कारण 4 साल 5 साल भी लड़कों को लगते हैं, उसके बाद फिर 2 साल का बीएड करना होता है और तब आप टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन ये जो नया बीएड आया है इंटीग्रेटेड बीएड, जिसको इजी टेप बोलते हैं, कई लोग आप जानते होंगे, एनसीटी जो नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल है, उनके द्वारा भी आईटेप चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड ही है, वो 4 साल का वो भी है। वहां पे जनरल बीएड की पढ़ाई होती है और हमारे यहाँ स्पेशल बीएड की पढ़ाई होती है। अब स्पेशल ये है कि अभी जो कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने या आईसीएसई बोर्ड ने या स्टेट बोर्ड ने ये कंपलसरी किया है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर को की का अपॉइंटमेंट जरूरी है, ये कंपलसरी हो गया है। और आप देखे होंगे पिछले 6 महीने के अंदर में सेंट्रल स्कूल जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार और नवोदय विद्यालय संगठन भारत सरकार, इसके द्वारा देश के स्तर में वैकेंसी निकाली गई हर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने, और खासकर बिहार की बात हम करें तो बिहार ने बीपीएससी जो बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन है वहां से भी वैकेंसी टीचर की आई, और 29 जनवरी को ही करीब 7,500 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी जिसका रिटन टेस्ट हुआ है और उसके बाद वो स्कूल गवर्नमेंट

0: गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के रूप में वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो वो जो डिग्री है जिसके बेस पर वो बीपीएससी की परीक्षा देंगे या सेंट्रल स्कूल या नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करेंगे, वो यही इंटीग्रेटेड बीएड है या यही बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। डॉक्टर अविनीश से हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अविनीश, आप ये पढ़ाई करके चाहे जहां के रहने वाले हों, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा या फिर और भी गोड्डा के रहने वाले हों या फिर आप डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, कहीं भी आप ये पढ़ाई करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, समाज की भलाई भी कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा?
0: मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है वो एक रूरल एरिया में हमारा यूनिवर्सिटी है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी हम लोग कैंपस के अंदर में इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर हमारे यहाँ चलते हैं जो इस तरह के बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी थेरेपी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हमारे सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है। और आप जैसे लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, करने के बाद आप सक्षम ऐसे होंगे कि आप ऐसा सेंटर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में खोल पाएंगे। आप उनको तो सर्विस देंगे ही, एक बहुत ही नोबल सर्विस है वो तो आप देंगे ही, साथ साथ आप एक अच्छी अर्न भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे जो आज बॉम्बे में जाके, दिल्ली में जाके, बड़े शहर में जाके इलाज करा के लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो तो बच्चों का क्या होगा कि अपने पेरेंट्स के साथ भी रह पाएंगे और आपके यहाँ थेरेपी होगी तो आपका भी एक अच्छे से धनोपार्जन होगा और आप एक सोशल सर्विस के साथ साथ अपनी जीवन को का भी आपन भी अच्छे से कर पाएंगे।
1: एक बात और बताइए, हाँ, कि ये जो कोर्स है ना इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन का, ये सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में हो रहा है या बिहार के और भी किसी हिस्से में हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है, इसकी भी जानकारी भी हमें दे दीजिए, युवा साथियों को होनी चाहिए।
0: वर्तमान में झारखंड और बिहार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ही है जहां पे ये पिछले साल से ये कोर्स शुरू किया गया है और भारतीय पुनर्वास परिषद ने इन्हें दो कोर्स, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के दो कोर्सेज के लिए मान्यता दी है और अगले 5 साल तक के लिए ये मान्यता है। और यूपी में एक आध जगह कहीं शुरू हुआ है, वो भी बहुत ही छोटे स्तर पे भी अभी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके ही राज्य में एक बड़ा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है।

0: जरूर पूरे होंगे, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि 4 साल के अंदर में आप जब पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी आपके दरवाजे खड़ी होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी इसमें है और लोग कम है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं कि अभी जो जस्ट 29 जनवरी को परीक्षा हुई है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो 7,500 सीट थे और करीब करीब 6,500 से 7,000 ही कैंडिडेट अपीयर हुए उसमें। तो आप ये अंदाज लगाइए कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर जो लोग जितनी जल्दी इस फील्ड में आएंगे उनका नौकरी उतना ज्यादा श्योर है, क्योंकि अभी सारी जगह वैकेंसीज हैं, सब जगह खाली सीट है, तो आप आएंगे तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर अभिनेश रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, एकदम नया
0: बड़ा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
1: अच्छा एक बात बताइए, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल में बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज, हाँ ये सारे उपलब्ध हैं, इसका मतलब क्या है?
0: ये ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी, मतलब कि आप ग्रेजुएशन भी आपका होगा, मतलब अगर आप बीए करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। साथ साथ इसी ड्यूरेशन में, मतलब 4 साल के ही अंदर में, आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के भी पढ़ाई को करके उसकी भी डिग्री ले पाएंगे। मतलब ये ड्यूअल डिग्री है, आप दो कोर्स एक साथ कर रहे हैं और एक ही पीरियड में आपको दो तरह की डिग्री मिल जाएगी।
1: अच्छा चलिए, आपके यहाँ जैसा कि आपने इस सवाल के पहले जवाब दिया कि संभवतः ये सिर्फ आपके यहाँ ही शुरू किया गया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो अपने बारे में बताइए कि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, हाँ क्या एक नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि नहीं है?
0: इस कोर्स को शुरू करने से पहले भारतीय पुनर्वास परिषद में हम लोगों ने जब अप्लाई किया था एफिलिएशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, तो एक उनका एक अपना नॉर्म्स है कि कितने टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम कैसे हो, लाइब्रेरी कैसे हो, आप हम लोगों के साथ एक स्कूल अटैच हो जहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को हम लोग भेज सकें। तो ये सब कुछ के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। वहाँ से हम लोगों के टीम एक आई, इंस्पेक्शन हुई, एक प्रोफेशनल्स की टीम आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोगों को ये रिकॉग्निशन मिला कि आप इस कोर्स को चला सकते हैं। और ये चूंकि हमारा कैंपस करीब करीब 100 एकड़ में है और इसमें और भी कई दूसरे कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हमारे यहाँ टीचिंग की क्वालिटी को लेके, हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा माहौल है, जिसके का रिकॉग्निशन हमारी कई जो सेंट्रल जो काउंसिल्स हैं उन्होंने दिया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। उसी तरीके से भारतीय पुनर्वास परिषद ने के मानक पे हम लोग खड़े उतरे हैं, जिसके कारण हमको ये मान्यता मिली है।
1: बहुत खूब, हाँ डॉक्टर अवनीश रंजन, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और क्या कहना चाहते हैं चलते चलते लोगों से,
0: युवाओं से अपील है हमारी कि आप ये इस कोर्स को एक बार समझिए, एक बार देखिए, एडमिशन लीजिए। आप अगर आप ग्रेजुएशन, आपका अगर प्लान है कि आगे जाके आपको टीचर बनना है या आगे आपको जाके ऐसे काम को करने हैं जिसमें कि आपकी अच्छी अर्निंग भी हो, आप सोशल सर्विस भी कर पाएं और आपका रिकॉग्निशन सोसाइटी भी अच्छा बने, तो आप तीनों, आप अगर इस कोर्स को करेंगे तो तीनों आपके जो नीड है या आपके तीनों जो आपके जो ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि 4 साल के अंदर में आप जब पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी आपके दरवाजे खड़ी होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसमें है और लोग कम है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं कि अभी जो जस्ट 29 जनवरी को परीक्षा हुई है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो 7,500 सीट थे और करीब करीब 6,500 से 7,000 ही कैंडिडेट अपीयर हुए उसमें। तो आप ये अंदाज लगाइए कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर जो लोग जितनी जल्दी इस फील्ड में आएंगे उनका नौकरी उतना ज्यादा श्योर है, क्योंकि अभी सारी जगह वैकेंसीज हैं, सब जगह खाली सीट है, तो आप आएंगे तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर अभिनेश रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों

0: नंबर है 1800121051 और एक वेबसाइट का पता भी है www.gnsu.ac.in। इसमें जितने तरीके के 13-14 तरीके के टेक्निकल पढ़ाई कराए जाते हैं सारी की जानकारियां आपको मिलेंगी। फिलहाल थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि उन्होंने ये कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:34 हुए, कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे भेंटवार्ता में डायबिटिक कारण एवं बचाव। भेंटवार्ता कारण डॉक्टर रविंद्र कुमार अम्बस्ट रांची, भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल की जो जीवन शैली है काफी अव्यवस्थित हो गई है। हमारा खाने पीने का तरीका में काफी बदलाव आ गया है, रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां आप तक पहुंच जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी बीमारी से

0: परेशान हैं, बड़ों के क्या कहें। और एक ऐसे ही बीमारी है मधुमेह या डायबिटिक, जिससे हमारे लगभग लगभग बहुत सारे साथी, हम तो यूँ कहें कि 10 में से 4 या 5 व्यक्ति मधुमेह के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये मधुमेह होने का जो प्रमुख कारण क्या है, क्या हमारी बदलती जीवन शैली है, हमारा खान पान है, और इसके लक्षण क्या हैं, ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और अपने जीवन शैली में हम बदलाव करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार अम्बष्ट जी। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में डायबिटिक होने का क्या कारण मानते हैं?
1: वर्तमान समय में डायबिटीज होने का मुख्य कारण जो है से आजकल की जीवन शैली। आजकल का जो जीवन शैली है वो बड़ा ही पहले की अपेक्षा बिल्कुल ही बदल गया है। पहले के लोग जो है समय पर खाना पीना करते थे, समय पर सोते थे, उतना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस नहीं था। आजकल हर व्यक्ति जो है स्ट्रेस में जी रहे हैं और रात में को दिन की तरह काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने के होड़ में जो है सो अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब किए जा रहे हैं। खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं है, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ नहीं खा रहे हैं, कभी शाम खा रहे हैं, कभी सुबह खा रहे हैं, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा रहे हैं, उसके साथ नशा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही सब कारण डायबिटीज वगैरह बहुत फैल रहा है। और डायबिटीज़ हर घर में दिखेगा तो एक ना दो जन इससे पीड़ित हैं। डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस उसको कहते हैं जिसको कि उसको एक्चुअल में हिंदी में मूत्रमेह बोला जाता है, जिसमें कि जो व्यक्ति पेशाब करते हैं उसमें शुगर का कोई शिकायत नहीं होता, लेकिन उसको पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, बहुमूत्र बोलते हैं। जो व्यक्ति जो है सो रात में कई बार उठ उठ के बाथरूम जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, इवन बेड वेटिंग भी आता है, बच्चों को बेड वेटिंग हो जाता है, और यही सब जो है सो पॉलीयूरिया का कारण है। अगर पैथोलॉजिकल जांच कराएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका बढ़ावा मिलेगा, जो कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1015 ले करके 1030 तक के बीच में होता है, और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको उससे बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, इसमें डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है, शरीर में कमजोरी आते जाती है। और इसका होने का मुख्य कारण क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ सिक्रीशन में कमी आता है, चाहे उसके लिए बहुत सा फैक्टर है, जैसे मान लीजिए ब्रेन में ट्यूमर है, सार्कोमा है, और माथे में सिर में चोट लगा हो, मतलब सर्जरी हुआ हो सिर में, ये सब कई कारण है जिसके वजह से वहाँ जो ट्रैक्ट बना हुआ उसको हार्मोन को ले जाने के लिए उसमें डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वो हार्मोन वहाँ जा नहीं पाता है या कम जा पाता है, जिस वजह से ब्लड स्ट्रीम में जा कर के मिलने से उस चूँकि कब पेशाब जाना है नहीं जाना है उस चीज़ पर कंट्रोल करता है, जो कि उस चीज़ पर जब वो हार्मोन नहीं पहुँचने से वो पेशाब की मात्रा जो बढ़ जाती है, और इस तरह से डायबिटीज इंसिपिडस जिनको होता है वो डायबिटीज इंसिपिडस का रोगी कहलाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज के प्रमुख लक्षण है वो क्या है, ताकि हम सावधान हो जाएं और अपना इलाज शुरू कर दें?
1: डायबिटीज इंसिपिडस का जो लक्षण है, अब जैसे प्यास अधिक लगता है, मुंह सूखता है, डिहाइड्रेशन होता है, ये सारे उसके लक्षण हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगा, जांच करावेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका बढ़ावा मिलेगा। ये इंसिपिडस जिसको कि मूत्र में है उसको कहते हैं। और जो डायबिटीज़ जिसको कि लोग जनरली मानते हैं, जो जिसको को उसको कहा जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस को मधुमेह बोलते हैं, जिसमें शर्करा के जाने की शिकायत रहती है, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। और इसका मुख्य कारण है हमारा मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ी। मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ी क्या है, इस सेंस में कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो बसा फैट जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सही से उसका चयापचन नहीं हो पाता है, उसको डिसइंटीग्रेशन होने में दिक्कत होता है, उसमें जो केमिकल कुछ चेंजेज आ जाता है, जिस वजह से अंतिम जो उसका रूप है ग्लाइकोजन में परिवर्तित

0: जिस वजह से ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ता है। और इसमें बहुत हद तक जो है सो पैंक्रियाज से रिलेटेड जो लैंगरहंस ऑफ आइलेट है, जहाँ उस सेल है, वहाँ से इंसुलिन का निर्माण होता है। और इंसुलिन हो सकता है कि या तो निर्माण होता नहीं है, या कम होता है, या निकलता नहीं, जो भी रीज़न है, इंसुलिन उसके लिए उत्तरदायी होता है। इंसुलिन अगर जो है सो सही मात्रा में आता है, तब तो उस ब्लड शुगर सही नॉर्मल रहता है। अगर इंसुलिन नहीं रहा तो ब्लड शुगर आपको जो है सो बढ़ावा मिलेगा। ब्लड शुगर अगर जांच कराइएगा तो खाना खाने के बाद 149 से ऊपर दिखेगा, 180 तक तो मान लीजिए चलता है, 180 से ऊपर दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि हम शुगर से ग्रसित है।
1: डायबिटिक होने के उपरांत किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, अपने जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, खान पान में हम किन किन चीज़ों का सेवन करें और किन किन चीज़ों से हम दूरियां बनाएं।
0: वैसे तो यह फैटल नहीं है, डायबिटीज़ को अगर सलीके से अगर उसको मेंटेन किया जाए, उसको खान पियान में कुछ परिवर्तन किया जाए, जिस तरह से बॉडी वेट के अनुसार अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 65 किलो है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम 150 ग्राम होनी चाहिए, और प्रोटीन की मात्रा 70 ग्राम और फैट की मात्रा 60 ग्राम के आसपास होनी चाहिए, जो मिला जुला के 1400 कैलोरी लगभग उनको मिलना चाहिए। इससे उनका वो मेंटेन रहेगा खान पियान के लिए। दूसरी बात, नशा वगैरह कुछ करते हैं उसको छोड़ दें, सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह किया करें, मॉर्निंग वॉकिंग किया करें, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेकर कोई काम ना करें, घर में किसी तरह कोई तनाव ना लें, तो इस सब बहुत हद तक हम बचे रहेंगे। और इसका जो जरूरी मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है, वो रेगुलर लेते रहें। हाँ, डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें, अपने से कोई दवा ना करें। डायबिटीज़ का कोई विशेष कोई ऐसा लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लक्षण ऐसा है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना, शरीर में वजन घटता चला जाना, मस्कुलर वेस्टिंग हो जाना, ये सब कई कारण है। और भी इसमें लक्षण कुछ दिखता है, जैसे आपका स्त्रियों में प्रूराइटिस भाल्वा, उसको बोलते हैं, काफ़ी इचिंग होता है पेशाब के रास्ते में, और स्किन डिजीज वगैरह हुआ, और वाल्वाइटिस हुआ। जेंट्स में बलानाइटिस इसको बोलते हैं, लिंग मुंड में सूजन हो जाना, वहाँ स्किन का एरप्शन होना, ये सब कई कारण हैं जो डायबिटीज़ के लक्षण हमें दिखाते हैं।
1: जब डायबिटीज से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो वो मीठा खाना छोड़ देते हैं, मीठा से बहुत दूरियाँ बना लेते हैं, तो कितना मीठा खाएं, चाय में शक्कर की मात्रा वो नहीं लेते हैं, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि डायबिटिक हो भी जाता है तो अपने आप को मेंटेन करते हैं और सभी चीज़ें खाते रहते हैं, तो कौन कौन से फल का सेवन किया जाए, कौन कौन से सब्जियों का सेवन किया जाए, और भात दाल के अलावा और अपने भोजन में शामिल किया जाए, ताकि हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बिल्कुल
0: सब्जियों में हरा साग सब्जी, पालक साग हुआ, मेथी हुआ, ये सब जो है सो इस्तेमाल करें, और फल में खट्टे फल का इस्तेमाल करें, जैसे संतरा हुआ, ये सब जो है सो मीठे फल का इस्तेमाल ना करें
1: जी।
0: और खाने के लिए चना फुला के या भूंज के भुंजा के रूप में लें, ये बहुत ही अच्छा है। सत्तू के रूप में लें, सत्तू प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। चावल की मात्रा को कम करें, आटा जो लेते हैं गेहूं की, उसमें मिक्स आटा मिले, जैसे ज्वार माजरा ये सब की चना के आटा मिला करके रोटियां बनाएं, और चोकर सहित रोटियां बनाया करें, वैसे नहीं कि चोकर निकाल के मैदे वाला आटा खाएं, तो वो नहीं खाना चाहिए। और खाने जो है सो ठूस ठूस के खाना नहीं खाना है, पानी की सेवन ज़्यादा करना है, और कम कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पर लेते रहें, और कुछ कुछ काम करते रहें, एकदम से निठल्ला बैठ के भी ना रहें। मैंने सिर्फ जो बैठने वाला काम है तो बीच बीच में उठ करके सुबह सुबह शाम को सुबह में टहलें, कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगा। आपको मिठाई का सेवन उसके लिए मना ही है, लेकिन थोड़ा मोड़ा ले लेते हैं दवाई के साथ साथ में, तो चलिए वो चल सकता है थोड़ा सा।
1: तो डॉक्टर साहब, हम जी दवाइयों की बात करें, किसी को मधुमेह की बीमारी हो गई तो होम्योपैथिक में इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
0: हाँ, इसीलिए कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे आपका सीजीजियम जम्बो लेना है, मदर टिंक्चर के रूप में आती है, एब्रोमा अगस्टा है, हेलोनियस है, फिर जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा है, सेफालेंड्रा इंडिका है, ये सब मदर टिंक्चर के रूप में आती है, जो 10 से 20 बूंद की

0: मात्रा में लेने से शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा जाता है। और भी कुछ दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई पड़ता है होम्योपैथी में, जैसे प्लम्बम मेटालिकम है, एसिड फॉस है, आपका एसेटिक एसिड है, आर्सेनिक ब्रोम है, ये सारी दवाइयाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन उसके लक्षण अनुसार देने से काफ़ी आराम हो जाता है। और किसी किसी को तो बिल्कुल जड़ से भी आराम होता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा उनको मिल जाती है तो बिल्कुल जड़ से भी आराम होता है।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया दूरिया बनाए।
0: वैसे तो यह फैटल नहीं है डायबिटीज़ को, अगर सलीके से अगर उसको मेंटेन किया जाए, उसको खान पियान में कुछ परिवर्तन किया जाए, जिस तरह से बॉडी वेट के अनुसार अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 65 किलो है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम 150 ग्राम होनी चाहिए और प्रोटीन की मात्रा 70 ग्राम और फैट की मात्रा 60 ग्राम के आसपास होनी चाहिए, जो मिला जुला कर 1400 कैलोरी लगभग उनको मिलना चाहिए, इससे उनका वो मेंटेन रहेगा खान पियान के लिए। दूसरी बात, नशा वगैरह कुछ करते हैं उसको छोड़ दें, सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह किया करें, मॉर्निंग वॉकिंग किया करें, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेकर कोई काम ना करें, घर में किसी तरह कोई तनाव ना लें, तो इस सब बहुत हद तक हम बचे रहेंगे। और इसका जो ज़रूरी मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है, वो रेगुलर लेते रहें। हाँ, डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें, अपने से कोई दवा ना करें। डायबिटीज़ का कोई विशेष कोई ऐसा लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लक्षण ऐसा है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना, शरीर में वजन घटता चला जाना, मस्कुलर वेस्टिंग हो जाना, ये सब कई कारण है। और भी इसमें लक्षण कुछ दिखता है, जैसे आपका स्त्रियों में प्रूराइटिस भाल्वा उसको बोलते हैं, काफ़ी इचिंग होता है पेशाब के रास्ते में, और स्किन डिजीज वगैरह हुआ और भाल्वाइटिस हुआ। जेंट्स में बलानाइटिस इसको बोलते हैं, लिंग मुंड में सूजन हो जाना, वहाँ स्किन का एरप्शन होना, ये सब कई कारण हैं जो डायबिटीज़ के लक्षण हमें दिखाते हैं।
1: जब डायबिटीज से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो वो मीठा खाना छोड़ देते हैं, मीठा से बहुत दूरियां बना लेते हैं, तो कितना मीठा खाएं, चाय में शक्कर की मात्रा वो नहीं लेते हैं, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि डायबिटिक हो भी जाता है तो अपने आप को मेंटेन करते हैं और सभी चीज़ें खाते रहते हैं। तो कौन कौन से फल का सेवन किया जाए, कौन कौन से सब्जियों का सेवन किया जाए, और भात दाल के अलावा और अपने भोजन में शामिल किया जाए ताकि हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बिल्कुल
0: सब्जियों में हरा साग सब्जी पालक साग हुआ, मेथी हुआ, ये सब जो है उसको इस्तेमाल करें, और फल में खट्टे फल का इस्तेमाल करें, जैसे संतरा हुआ, ये सब जो है सब मीठे फल का इस्तेमाल ना करें
1: जी।
0: और खाने के लिए चना फुला के या भूंज के भुंजा के रूप में लें, ये बहुत ही अच्छा है। सत्तू के रूप में लें, सत्तू प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। चावल की मात्रा को कम करें, आटा जो लेते हैं गेहूं की उसमें मिक्स आटा मिले, जैसे ज्वार माजरा ये सब की चना के आटा मिला करके रोटियां बनाएं, और चोकर सहित रोटियां बनाया खाएं, वैसे नहीं कि चोकर निकाल के मैदे वाला आटा खाएं, तो वो नहीं खाना चाहिए। और खाने जो है सो ठूस ठूस के खाना नहीं खाना है, पानी की सेवन ज़्यादा करना है और कम कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पर लेते रहें, और कुछ कुछ काम करते रहें, एकदम से निठल्ला बैठ के भी ना रहें। मैंने सिर्फ जो बैठने वाला काम है तो बीच बीच में उठ करके सुबह सुबह शाम को सुबह में टहलें, कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगा। आपको मिठाई का सेवन उसके लिए मना ही है, लेकिन थोड़ा मोड़ा ले लेते हैं दवाई के साथ साथ में तो चलिए वो चल सकता है थोड़ा सा।
1: तो डॉक्टर साहब, हम जी दवाइयों की बात करें, किसी को मधुमेह की बीमारी हो गई तो होम्योपैथिक में इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
0: हाँ, इसीलिए कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे आपका सीजीजियम जंबोलेनम है, मदर टिंक्चर के रूप में आती है, एब्रोमा अगस्टा है, हेलोनियस है, फिर जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा है, सेफालेंड्रा एंडिका है, ये सब मदर टिंक्चर के रूप में आती है, जो 10 से 20 बूंद की मात्रा में लेने से शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा जाता है। और भी कुछ दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई पड़ता है होम्योपैथी में, जैसे प्लम्बम मेटालिकम है, एसिड फॉस है, आपका एसेटिक एसिड है, आर्सेनिक ब्रोम है, ये सारी दवाइयाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन उसके लक्षण अनुसार देने से काफ़ी आराम हो जाता है। और किसी किसी को तो बिल्कुल जड़ से भी आराम होता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा उनको मिल जाती है तो बिल्कुल जड़ से भी आराम होता है।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया।

डॉक्टर रविंद्र कुमार अम्बश साहब, आपने बड़ी अच्छी बातचीत की डायबिटिक पर। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने जीवन शैली में सुधार कीजिएगा, अपने जीवन शैली को व्यवस्थित कीजिएगा, और समय पे खाना और समय पे सोना यदि आप नियमित करते हैं, और साथ साथ प्रातःकालीन आप यदि वॉक करते हैं, तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, और हम एक स्वस्थ समाज और देश का निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। हंसते रहिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8 बजे चित्रपट फिल्म संगीत का कार्यक्रम। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

अभी आपने सुना फिल्म में सिंदूर और अब आइए सुनते हैं फिल्म गुरु के इस गाने को लता मंगेशकर शैलेंद्र की आवाज़ में, लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाज़ में, बप्पी लहरी के संगीत हैं अनजान के बोल।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे 8:45 में हिंदी में समाचार, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री

0: जोनस गॉस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गॉस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को
2: सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य

0: सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर

अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन गर्म लू की सूरत हाल रहने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले 2 दिनों के दौरान गर्म लहर की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान बस्तर ज़िले में नितनार गांव में अवामी खिदमात के एक मरकज का इफ्तिताह किया। इस मरकज का नाम कबायली लीडर और शहीद मुजाहिद आज़ादी वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगले 1.5 बरस में बस्तर में कायम तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 को इसी तरह के खिदमात से मुतालिक मरकज बना दिया जाएगा। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रिसस से स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में मुनक़िदा 79वीं आलमी सेहत असेंबली से अलग मुलाकात की। जनाब नड्डा ने आलमी सेहत इक्विटी की पेशरफ के तहत भारत के अज़्म को दोहराया और कुछ अहम स्कीमों को उजागर किया, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, रिवायती अदवियात, मसनूई जहानत से चलने वाले अवामी सेहत की इख्तिराआत और टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की जाने वाली पायदार कोशिशें। डॉक्टर टेड्रोस ने सेहत के शोबे में भारत की असलाहत और आलमी सेहत शराकत दारी में उसकी क्यादत की तहसीन की और मुश्तरक तरजीहात के ताल्लुक से आलमी सेहत तंजीम के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की रिफाइनरीज में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है और मगरबी एशिया के जारी बहरान के बावजूद भारत में खातिरखा खाम तेल मौजूद है। नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का खातिरखा जखीरा मौजूद है। इसके बावजूद अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों से LPG की घबराहट में खरीदारी की खबरें मिल रही हैं। केमिकल और कीमियावी खादों की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने बताया कि मुल्क भर में 200 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर दस्तियाब है और खरीफ की फसल के लिए कीमियावी खादों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाकई धनीवरी में एक बारात को ले जा रहे ट्रक और एक कंटेनर के दरमियान टक्कर से हुए सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं और 20 दीगर जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी का अंदेशा है। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हम मनसब जॉनस घर स्टोर के साथ मुजाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई और नीलगू मीशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वजीर आजम मोदी को किंग हराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदाद का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमेरिका के एक सनती वफ से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: मुझसे प्यार है। बागों में बहार है।
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: संवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना। अरे या या या।

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

0: हुए।
1: फरीदा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड

के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की, साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ, जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से।

विविध भारती के प्रसारण सेवा छाया गीत हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी जुड़ी घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, और अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक हम बने हैं आपके साथ रजनीगंधा कार्यक्रम के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीकांता। अभी आपने सुना फिल्म प्रेम गंध के इस गाने को विनोद राठौर, अलका याग्निक की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संग।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा भी आपने सुना। लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, अमर उत्पल के संगीत और आनंद बख्शी के बोल थे। फिल्म का नाम था शहंशाह। और अब आइए आपको सुनवाते हैं सादा सरगम नितिन मुकेश की आवाज़ में, दिवर के बोल राजेश रोशन के संगीत में, खून भरी मांग फिल्म के इस गाने को।

0: हमको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

सुना दोस्तों फिल्म बनारसी बाबू के इस गाने को, कल्याण जी आनंद जी के संगीत थे। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और अब आइए सुनते हैं साधना सरगम पंकज उदास की आवाज़ में हिंदी भर के बोल बिजू शाह के संगीत। फिल्म का नाम है मोहित।

सुनते हैं फिल्म राम अवतार की इस गाने को, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज उदित नारायण की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, आनंद बख्शी के बोल।

फिल्म सिर्फ तुम के इस गाने को आपने सुना अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल, नदीम शवन के संगीत थे। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सायन के इस गाने को, एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, संगीत नदीम शवन के हैं, बोल।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रात्रि 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता

के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ते मंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ते